सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, अश्विन माह की तिथि 4, तदनुसार सितंबर 26, ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में

शस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे रीना मिश्रा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहर चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 10:00। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 1:20 पर। 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कार्यक्रम विवरण का प्रसारण आप सुनेंगे शाम के 5:02 पर। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक

समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। शाम 7:30 का समय होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा खाद का उपयोग करने का सही तरीका। इसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत प्रेम सिंह पूर्ति और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगे सुरोवी पान और साथी। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर। रात्रि के 9 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे डेली कैप्सूल हाइलाइट्स पर 20 इंडेक्शन ऑफ एशियन गेम्स 2026, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 10:20 पर सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजने वाले हैं। सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम जोहार चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म हम जोली के इस गीत से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म घर से, लता मंगेशकर के स्वर में।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा का ये गीत रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म इजाजत से आशा भोसले के स्वर में।

0: अभी आपने सुना फिल्म गोलमाल का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत। फिल्म एक दूजे के लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

अभी आपने सुना फिल्म लम्हे का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार झुकता नहीं। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता की साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई

0: जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस से सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान

0: देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हॉर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: साथ विकास करें। जो नया कोड है उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न प्रावधानों से अनुपालन की जटिलता कम करने की कोशिश की गई है और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर व्यवस्था भी सिर्फ निरीक्षण की बजाय मार्गदर्शन की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जबकि प्रति सप्ताह 48 घंटा की सीमा में ओवर टाइम को दोगुना करने का प्रावधान भी है, जिसमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के अनुसार बेहतर मैन पावर प्लानिंग संभव हो सकती है।
1: डील फॉर लेबर कोड एम टू मॉडर्नाइज इंडिया लेबर इकोसिस्टम, ब्रिंगिंग बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स अंडर अ यूनिफाइड सेट ऑफ रूल्स दैट सिंप्लीफाई कंप्लायंस, एंश्योर सेफ्टी एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। फॉर वर्कर्स दिस एंश्योर्स रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी, सेफ वर्कप्लेसेस एंड ब्रॉडर एक्सेस टू बेनिफिट। फॉर एंटरप्राइजेस इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी न्यूज, चंडीगढ़।
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York.
3: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and mariners have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea, and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
2: In sports, Indian marathon runner Savan Barwal created history at the Asian Games 2026 by winning a silver medal in the men's marathon event, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to register his personal best and set a new national record in the men's marathon final. He finished behind Japan's Yamashita, who claimed the gold medal after pulling ahead in the closing stages of the race. In faded chess Olympiad, reigning world classical chess champion D. Gukesh secured a clutch win to help India beat overnight joint topper Germany 2.5 to 1.5 in the ninth round of the men's open section, moving up to second position in the standings. With this win, India rode back into title contention as they are in good position to challenge table toppers Uzbekistan for the title. In the women's section, B. Savita Shree's incredible run of 7 successive wins came to an end but remained unbeaten after a draw against Karimova Guldona of Uzbekistan on the top table. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
4: Thank you, Anuja. The Times of India highlights Prime Minister Modi's virtual interaction with Seva Yatris from Varanasi to Vadnagar to blend social reform with political work rather than focusing only on vote banks. Key trade pacts in mind, Delhi looks at multi-nation visit by PM Modi in December. Destinations may include the US, Canada and at least 2 European countries, writes the Indian Express. The Statesman writes, AIIMS Delhi records over 50 lakh OPD visits, nearly 3 lakh surgeries in a year. A headline in the Economic Times states, rupee recovers as large public sector banks sell dollars. And finally, Hindustan Times and all other dailies carry the news of India ending its wait for gold in shooting. The headline says, shooters strike gold. India scales new heights with its first pole vault medal. And with that, it's back to you, Anuja.
2: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says gap between cities and villages in India has narrowed significantly over past 12 years. Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Japan. And Lee Gukesh secures India's victory over Germany in ninth round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: हरे रंथु बेटा, अपनी गाड़ी हमेशा तैयार रखना। अब तुम्हारी भाभी के बच्चा होने का समय निकट आ गया है। इस बार उसे स्वास्थ्य केंद्र ही ले जाऊंगी।
7: घर में प्रसव होने से कई परेशानियां हो सकती हैं।
6: उचित देखरेख और स्वास्थ्य के लिए महिला का प्रसव
7: स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएं।
6: गर्भ के दौरान बराबर जांच कराते रहें।
7: हमेशा सही और ANM से संपर्क में रहें।
6: सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर सरकार BPL परिवार को
7: माँ बच्चे के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: देखिए सरपंच साहिबा, हमारा मकान का नया नक्शा ऐसा बनेगा कि पूरा गांव में नहीं होगा।
10: नक्शा तो ठीक है, पर इसमें शौचालय कहाँ है?
9: अरे उसकी क्या जरूरत, हम तो हमेशा खेत खलियान में जाते हैं।
10: क्या कहा? खुले में मल से खतरनाक कीटाणु फैलते हैं, फिर हमारे हाथ के माध्यम से खाने में आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हमेशा साफ और पक्के शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में भारी बारिश के कारण रांची, जमशेदपुर और चाईबासा में आज सभी स्कूल बंद। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश किया रद्द। अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय भुगतान का निर्देश। राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से 1114 गुमशुदा मोबाइल ट्रैक कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। कोडरमा में सबसे ज्यादा बरामदगी। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की रांची में पांचवी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी। देश भर के 1000 से अधिक विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर कर रहे हैं मंथन। और रांची के खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी कंडम और लावारिस बसों को हटाने का निर्देश। 7 दिनों में नहीं हटाने पर होगी नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लगातार भारी बारिश के बीच चाईबासा, जमशेदपुर और रांची जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आज कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
1: जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 122.22 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं खरकई नदी का जलस्तर 131.70 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने याचिकाकर्ता मेरी मुर्मू तथा अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। मामले के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रार्थियों को अप्रैल 2025 से उनके बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया है।
2: आज सारा सरकार का जो भी सर्कुलर था, जेईपीसी का, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का, उस सबको सेट असाइड कर दिया हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट ने बोला कि ये लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेवा में, और जैसे चल रहा था इन लोगों का मानदेय भी, जिस पीरियड का ये लोग काम किए, वो सारा पेमेंट भी होगा। रिट पिटीशन अलाउ हो गया।
0: राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से राज्यभर से खोजे गए 1114 गुमशुदा मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को वापस लौटा दिए हैं। कल सभी जिलों में चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत सबसे ज्यादा 177 मोबाइल कोडरमा में और 105 गिरिडीह में सौंपे गए। रांची में 47 और हजारीबाग में 39 फोन बरामद किए गए। हजारीबाग के एएसपी अमित कुमार ने बताया कि खोए फोन को ट्रैक करने का यह अभियान

0: आगे भी जारी रहेगा।
1: जो भी जिन व्यक्तियों का मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, छीना गया है, CIR पोर्टल के माध्यम से हम लोग इसे खोजबीन करते हैं और उसका मोबाइल रिकवर कर हर महीने के 25 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यालय के निर्देश के आलोक में हम लोग उसे वितरित करते हैं जिनका मोबाइल। आज 39 लोगों को हम लोग मोबाइल वितरित के लिए यहाँ पर लाए हुए हैं, सभी को आपके समक्ष वितरित किया गया।
0: रांची SSP के निर्देश पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रिंग रोड पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को हटा दिया है। पुलिस के अनुसार सड़कों पर वाहन खड़े होने से लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों को भविष्य में सड़क पर गाड़ी न लगाने की सख्त हिदायत देते हुए निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करने की अपील की गई। त्योहारों के मद्देनजर लोहरदगा और धनबाद जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। लोहरदगा में कई दुकानों से नमूने रांची भेजे गए और गंदगी पर जुर्माना लगाया गया। उधर धनबाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजा कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर संदिग्ध पनीर घी जब्त किया गया तथा एक डेयरी सील की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चल रहा है।
2: अभी तक तो नोटिस डिलीवरी है 39 लाख वोटर का डिलीवरी हो चुका है। अभी कुछ जनरेशन के भी बाकी मैक्सिमम हम लोग उससे थोड़ा सा आगे डेट पड़ेगी ताकि सभी केस काम को रिस्पॉन्स।
0: रांची में 3 दिवसीय 5वीं अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसका उद्घाटन कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 1000 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
3: 5th मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के आयोजन झारखंड में मिला और इससे पहले ये कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में होना था, लेकिन वहाँ ना जाने क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने कहा कि नहीं, हमारा झारखंड छोटा झारखंड जरूर है लेकिन हर वो कॉन्फ्रेंस हम करेंगे जिससे लोगों को लाभ।
0: सम्मेलन में मोतियाबिंद और रेटिना जैसी आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर मंथन किया जा रहा है। रांची नगर निगम ने खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर में लंबे समय से खड़ी लावारिस कंडम और अनुपयोगी बसों को हटाने का निर्देश दिया है। अपर नगर आयुक्त द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार बस मालिकों को 7 दिनों के भीतर अपने वाहन हटाने होंगे। निर्धारित अवधि में बसें न हटाने पर निगम सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से इनका मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई शुरू करेगा। तय समय सीमा के बाद बस मालिकों का कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगी। रांची के नेपाल हाउस स्थित PFMS राज्य निदेशालय में 18 से 25 सितंबर तक आयोजित राजभाषा हिंदी सप्ताह संपन्न हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था। सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ लेखा अधिकारी विजय वर्धन और सुरेंद्र वर्मा सहित तकनीकी टीम ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन वर्णमाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने खराब मौसम और

0: स्कूलों के बंद रहने की सूचना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची में आज स्कूल बंद, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला में बाढ़ का खतरा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रांची में बच्चों से भरी बस पर गिरा पेड़। प्रभात खबर ने लिखा है, पेयजल विभाग के साथ इंजीनियर्स को एवीआई बना, दे दी 23 जिलों की कमान। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में भारी बारिश के कारण रांची, जमशेदपुर और चाईबासा में आज सभी स्कूल बंद। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां उफान पर, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने का आदेश किया रद्द। अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय भुगतान का निर्देश। राज्य पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल के मदद से 1114 गुमशुदा मोबाइल ट्रैक कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। कोडरमा में सबसे ज्यादा बरामदगी। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी की रांची में पांचवी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस जारी। देश भर के 1000 से अधिक विशेषज्ञ आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर कर रहे हैं मंथन। और रांची के खादघड़ा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी कंडम और लावारिस बसों को हटाने का निर्देश। 7 दिनों में नहीं हटाने पर होगी नीलामी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
2: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करो।
1: अच्छा,
2: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या ANM दीदी से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
6: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
5: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
6: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाए।
5: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाए।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी के महक। आज आप सुनेंगे संथाली लोकगीत कलाकार हैं सोना मुर्मू और साथी।

Yeah.

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना संथाली लोकगीत कलाकार थे सोना मुर्मू और साथी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

मनाने की शुरुआत वर्ष 2011 में 16वां वार्षिक दिवस 2026 जो अभी चल रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। इसकी आधिकारिक घोषणा इंडोनेशिया के बाली में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच के गहरे और अटूट संबंध के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। यह दिन याद दिलाता है कि स्वच्छ हवा, साफ पानी, सुरक्षित भोजन और उचित स्वच्छता के बिना स्वस्थ मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और खराब स्वच्छता से मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है। इस तरह से दुनिया भर के पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवर और कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, बातें हम आपसे और भी करेंगे, सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आपने सुना फाल्गुनी पाठक के स्वर में ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, एक दीप शिक्षा का जलाएं। भेंट वार्ताकार हैं प्रधान बिरुआ, उनसे बातें कर रही हैं आशा पिंगुआ।
1: जोहार, मेरा नाम प्रधान बिरुआ है और मैं पंद्रह साली गाँव जो की मंझारी प्रखंड में है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और मेरा जो पढ़ाई है वो बिहार के अलग अलग जिलों में हुआ है और उसके आगे इंटर जो है समस्तीपुर जिला में हुआ है और आगे का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बैंगलोर में किया है। और पिछले 25 वर्षों से बच्चों के शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं और शिक्षा में बच्चों को क्या क्या जरूरतें हैं, उनमें क्या बदलाव लाना है, समय समय पे हम लोग खुद से प्रयोग करते हैं कि बच्चों को किस माध्यम से सिखाया जाना चाहिए और उस पर हम लोग काम करते हैं और बच्चे में वो बदलाव देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं।
2: तो प्रधान जी, ऐसा करना है इस ये मतलब कि आपके मन में कैसे आया बच्चों?
1: जी जी हाँ, एक्चुअली इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरे पिताजी बिहार के दरभंगा जिले में कार्यरत थे। उस समय हमारा पिताजी का जो पोस्टिंग था वो कमतौल में हुआ करता था और वहाँ मैं वहाँ के विद्यालय में पढ़ रहा था तो वो थोड़ा सा उस समय ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था और बच्चे उतना पढ़ाई के प्रति उतना जागरूक नहीं हुआ करते थे और मैं वहाँ मॉनिटर भी हुआ करता था तो मैंने देखा कि बच्चे तो केवल स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर वो घर में नहीं पढ़ रहे। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि अगर इन बच्चों को अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो ठीक रहेगा। और फिर 2001 से मैं उन लोगों को अपने स्कूल के बाद जो खाली बचे हुए समय है काम का समय उनमें उन लोगों को पढ़ाने लगा और पढ़ाते पढ़ाते जब देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति आ रहा है और वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको मैंने अब साथ साथ जारी रखा और उसके बाद मैं लगातार वह काम करता रहा और फिर उसे कभी छोड़ा नहीं, जिसके कारण से अभी तक यह काम चल रहा है। तो शुरुआत वहां से हुआ था
2: जी। अच्छा, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में काफी अंतर है प्रधान जी।
1: जी हाँ,
2: आप क्या बोलेंगे?
1: जी हाँ, तो पहले ऐसा था कि जो समस्याएं हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वो तो अभी भी है, लेकिन अब जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे पहले जो लोग पढ़ाई करना चाहते थे वो पढ़ाई करते थे और जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करते थे, लेकिन अब जो पढ़ाई करना भी चाहते हैं तो उनके पास जो आजकल का जो माहौल है वो बदल सा गया है। अभी मोबाइल हमारे लिए सकारात्मक है तो वही दूसरी ओर नकारात्मक है, तो हमारा जो जो मन मस्तिष्क है और बच्चों का मन मस्तिष्क है उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा दिक्कत लगता है क्योंकि उन्हें होमवर्क बनाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, तो ऐसे में वो आसान चीजों को ढूंढते हैं तो उनमें आसान जो चीज है वो उन्हें मोबाइल लगता है। मोबाइल में वे रील देखते हैं तो उन्हें काफी खुशी महसूस होता है, वो फिल्म देखते हैं, तरह तरह के चुटकुला देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। फिर वो जो चीज देखते हैं वो फिर अपने साथ दूसरे बच्चों को भी बताते हैं तो धीरे धीरे कहीं उधर में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और जो गार्जियन जागरूक है वो तो खैर बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, जिनके टीचर ठीक है तो वो भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे तो पढ़ाई में धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन डिस्ट्रेक्शन फिर भी बढ़ते जा रहा है। अभी बच्चे इधर उधर घूमने के भी कुछ कुछ आदि हो जाते हैं तो वो साथ में उन बच्चों को भी ले जाने खोजते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ, तो वो भी एक डिस्ट्रेक्शन बढ़ते जा रहा है जी। और पेरेंट्स जो है अभी या तो बाहर कमाने जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। और पहले के समय में था कि मोबाइल डिस्ट्रेक्शन नहीं था तो बच्चे जो पढ़ना चाहते वो पढ़ते थे और वो प्रेरणा के रूप में देखते थे कि किसी का सिलेक्शन कहीं हो गया है तो चाहते थे कि हम भी उनकी तरह बने,

0: इन्हीं के रिलेशन में कोई अच्छा बन गया तो उनकी तरह बने पढ़े तो ये हो रहा है। लेकिन अभी का जो समय है वो मोबाइल का समय है, तो मोबाइल में बच्चे कुछ कंटेंट वगैरह भी बचपन में भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक दिशा बचपन से थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो बच्चे जो है कम बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखना थोड़ा सा मुश्किल सा काम हो गया है।
1: तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि उनके गार्जियनों से भी मिलना चाहिए, ताकि घर में जो है वो मोबाइल के नजदीक होते हैं तो
0: जी हाँ
1: वो लोग ही मतलब कि उन्हें सुधार सकते हैं माँ बाप।
0: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। अभी गार्जियन के पास भी जो समस्या है वो उनके जॉब को लेकर है, उनके रोजगार को लेकर है। तो अगर गार्जियन को पता भी है कि उनका बच्चा भटक जा रहा है तो उनके पास समस्या होती है कि वो तो खुद जॉब कर रहे हैं तो वो बच्चों को समय कैसे देंगे, ये एक समस्या उनके पास आ जाती है। और दूसरा अगर उनके माता पिता खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं तो दिन में बच्चा क्या कर रहा है तो वो उन्हें पता नहीं चल पाता है। और धीरे धीरे बच्चा को जो चीज अच्छा लगने लगता है तो वो जिद करने लगता है, फिर जब शाम भी होता है तो फिर बच्चे मोबाइल ही मान के सोचते हैं इसको सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, फिर 5 मिनट कब एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा में बदल जाता है, कहाँ में जा सकता है। तो आजकल के बच्चे ऐसे हो जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी माहौल के कारण समाज में जिस तरह का माहौल बन रहा है कि वो पढ़ाई से दूर भागकर यही सब उन्हें अच्छा लगने लगा है। तो गार्जियन भी ऐसे में कई गार्जियन भी है जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे बने पर वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि कैसे बच्चों को हम ट्रैक पे ला देंगे, क्योंकि कई बार बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और वो वही करना चाहते हैं जो बच्चे को अच्छा लगता है। तो ये एक चैलेंज बन के उभर रहा है गार्जियन के पास भी वर्तमान समय में।
1: अच्छा, शिक्षा के अंतर्गत आप लोग क्या क्या ज्ञान देते हैं बच्चों को?
0: जी, शिक्षा जो सबसे पहले जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बच्चों का साइकोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चे किस प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। फिर उन सब को समझते हुए पहले उन्हें हम लोग बेसिक पढ़ाना शुरू करते हैं और साथ ही साथ उन्हें काउंसलिंग वगैरह भी हम लोग करना शुरू करते हैं कि जैसे आपके घर में तो कोई जॉब नहीं कर रहा है, फिर आप भी अगर अच्छा नहीं पढ़ेंगे और अच्छा तैयारी नहीं करेंगे तो 5-10 साल जब तक आप युवा रहेंगे तो ठीक रहेगा, फिर उसके बाद तो आपको काफी समस्याएं हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, आदमी का काम भी अब धीरे धीरे AI कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, तो धीरे धीरे खतरा है। तो जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे, कुछ अच्छा स्किल नहीं अर्जित करेंगे या फिर कंपटीशन का तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो लगातार इस तरह का हम लोग माहौल बनाने का प्रयास करते हैं तो देखा देखी कुछ बच्चों में प्रभाव पड़ता है और वो लोग पढ़ने लगते हैं और उसके बाद उन्हें पढ़ाई में रुचि लगने लगता है। और वो जैसे समाज में अभी जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो उनसे पूरा अलग होकर पढ़ाई की ओर लगने लगते हैं। क्योंकि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं उनमें से तो जो बच्चे पुराने होते हैं उनका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट रहता है, या तो फिर बच्चे का किसी प्रतियोगिता में हम लोगों ने पार्टिसिपेट कराया तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें हम लोग बाहर ले जाते हैं तो वो बच्चों को लगता है हम भी खास पढ़े रहते तो मेरा भी सिलेक्शन होता और हमें भी उन जगहों पे जाने को मिलता और कुछ नया देखने को मिलता है। बीच बीच में फिर हम लोग किसी बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह भी जो पुराने बच्चे होते हैं उन्हें तैयारी कराए रहते हैं तो फिर उसमें भी उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जो नए बच्चे आते हैं तो उनमें दिखाई देता है कि एक बदलाव है जो ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस तरह का माहौल पहले बनाते हैं ताकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पढ़ाई से जुड़े रहे और वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने, अपने पेरेंट्स से भी अच्छा से बात करे, अपने सोसाइटी के लोगों से भी अच्छे बात करे, अच्छी आदतें अपनाए, अपने समाज से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े। तो ये सब जो चीजें हैं बहुआयामी उनको हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं और पढ़ाई को सावधानी पूर्वक जोड़े हुए उनके साथ रख रहे हैं ताकि बच्चा इधर उधर ना भटके और एटलीस्ट एक बेहतर समाज का निर्माण करे जब भविष्य में वो बड़े होंगे, तो या तो एक अच्छा पद ले या फिर अच्छा कृषि भी कर रहा है तो एक अच्छा किसान बने और समाज को भी एक अच्छे योगदानों से समाज को भी भला करे और अच्छा करे। तो इस तरह का हम लोग बच्चों के साथ माहौल बनाने का प्रयास करते हैं।
1: मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग नीति शिक्षा के ज्ञान भी देते हैं?
0: जी हाँ जी हाँ,
1: बहुत ही जरूरी है आज के बच्चों के लिए।
0: जी हाँ बिल्कुल, इसमें हम यह भी कहना चाहेंगे कि पढ़ाई तो उन्हें हम लोग देते ही हैं और साथ ही उनका पढ़ाई को गुणवत्ता पूर्ण के साथ हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी तरफ स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है, वहाँ पढ़ाई तो हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई का कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो बच्चे अधिकतर आते हैं तो वो तो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उनकी जो शुरुआती भाषा होती है वो हो भाषा या संथाल भाषा या फिर और भी जो क्षेत्रीय भाषा वो भाषा होती है, तो उन्हें अपने भाषा चूंकि बचपन में सीखे हुए रहते तो वही कमांड रहती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो पुस्तकें हैं वो शुरुआत में ही हिंदी में है, तो उनके लिए एकदम नया हो जाता है। अच्छा। फिर उन्हें वो बोलना सीखना भी एक चैलेंज होता है, उसके बाद उन्हें पढ़ना भी उनके लिए चैलेंज होता है। इसलिए आप जब कभी आसपास के गांव में जाएंगे, 6, 7, 8 के बच्चों से कभी बोलेंगे कि ये कुछ पढ़ के दिखा दो, तो वो कई बार नहीं भी पढ़ पाते हैं। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो पूरा पढ़ देंगे। हमने तो देखा है, चूंकि हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो देखे कि 8, 9 के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा भी हुआ है। और कई बार वो लिख भी नहीं पाते हैं, तो जब वो पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे हैं, तो और ऐसे ही वो धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में जब वो कंपटीशन भरेगा किसी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भरेगा, तो फिर उसका सिलेक्शन का उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। फिर मजबूरी वर्ष उन्हें भी पढ़ाई से धीरे धीरे अलग महसूस करेंगे, और फिर जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वो भी बाहर काम की तलाश में, मजदूरी की तलाश में बाहर चले जाएंगे, और हमारा जो क्षेत्र है जहाँ हमें युवाओं की जरूरत है, सकारात्मक युवाओं की, वो धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है और लोग पलायन होते हुए जा रहे हैं। तो ये आगे में ये एक समस्या के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं। तो अगर यही अच्छे पढ़े रहेंगे तो आस पास में भी जो भी अच्छे कंपनी है वहाँ एक अच्छे पद पे जा सकते हैं, या जो सरकारी पोस्ट है उसमें भी जा सकते हैं, या फिर उद्यमिता शुरू करके अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चों को बचपन से ही प्रतियोगी परीक्षाओं से भी जोड़ रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के जो सरकारी प्रतियोगिताएं आ रही है या फिर जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के कंपटीशन हो रहे हैं, तो उनको बचपन से तैयारी करा रहे हैं, ताकि उनको कंपटीशन का भाव बचपन से रहे, हेल्दी कंपटीशन की भावना उनमें बचपन से रहे, और वो अच्छा रिजल्ट करे और वो दूसरों को भी प्रेरित करे। एकदम वो आम परिवार से आया था और वो जब मेहनत करके अच्छा रिजल्ट कर सकता है, तो उनके साथ पढ़ रहे बच्चे या उनसे जूनियर पढ़ रहे बच्चे वो भी एक अच्छा रिजल्ट ला सके। तो हम लोग इस पे भी हम लोग ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे भी कुछ कुछ रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें से पिछले कुछ वर्षों में कई सारे बच्चे जो है एकदम आम बच्चे थे, जो पढ़ाई से लगभग टूटे हुए थे और छूट सा गए थे, फिर हम लोगों के शरण में आया, तो फिर हम लोगों ने उन लोगों को काउंसिलिंग वगैरह किया और साथ साथ पढ़ाना भी शुरू किया। और वही बच्चे अभी मैट्रिक में फर्स्ट डिविजन भी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ कुछ बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करके अलग अलग जगह भी ले गए हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, और कुछ बच्चे तो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचे हुए हैं। तो ये एक सकारात्मक चीज देखने को मिला है कुछ वर्षों में। तो इसे ये पता चला कि अगर जो बच्चे अभी पढ़ाई से भटक रहे हैं, अगर उस पर लगातार मेंटरशिप किया जाए, गाइड किया जाए, तो बच्चे जरूर पढ़ाई से वापस जुड़ते हैं, बशर्ते उन्हें देखने वाला कोई होना चाहिए, उन्हें गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, तभी वो जुड़ते हैं। और जब वो अच्छा करने लगते हैं तो फिर उनके मन में जितने भी डिस्ट्रेक्शन आए उनके आसपास के सराउंडिंग से, वो उससे नहीं भटकते हैं। जब वो देख लेते हैं कि भाई ये पाना है, तो फिर वो उसी में लग जाते हैं और वो फिर एक अच्छी दिशा में वो चले जाते हैं, एक अच्छा करियर का निर्माण करते हैं, जो भी चीज करते हैं अपने जीवन में, चाहे उद्यमिता हो चाहे कुछ भी हो, तो वो अच्छा करेंगे, क्योंकि अब दो डिफरेंस पैदा हो गया, एक तो नकारात्मक का और एक सकारात्मक का। जब उनमें नैतिक मूल्य रहेगा तभी समाज में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छी आदतें आएंगी, और उनके आसपास का भी जो सराउंडिंग होगा वो भी एक अच्छा होगा।
1: अब बच्चे जो है विज्ञान से भी जुड़ना चाहते हैं।
0: जी हाँ,
1: और तरह तरह की चीजें का निर्माण भी करना चाहते हैं वो।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो जी हाँ बिल्कुल, इस बारे में भी बताना चाहेंगे। जैसे कि अभी तो विज्ञान को थोड़ा सा बच्चों की नजर में मुश्किल का माना जाता है कि ये तो काफी डिफिकल्ट होगा।
1: हाँ।
0: लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों का जो पुस्तकें होते हैं तो उनमें देखेंगे कि शुरुआत क्लास में ही छोटे छोटे प्रयोगों के ऊपर चर्चा रहता है, और किताबों में जिन चीजों का जिक्र होता है वो तो हमारे आस पास ही मौजूद है, कहीं बाहर से तो नहीं आया है। अगर उनको हम लोग व्यवहारिक रूप से दिखाएं तो उनके आसपास ही वो नजर आते हैं, चाहे सूर्य हो, तारा हो, बादल हो, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, तो ये सब तो जनरली हम लोग आम तौर पर देख सकते हैं। और थोड़ी और मेहनत करें तो केमिस्ट्री की चीजें भी प्रबंध करने से वो सब मिल जाती है। तो उन सब चीजों को भी बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड अगर पढ़ाया जाता है तो उनमें भी रिजल्ट आता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों को बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड हम लोग करवाने का प्रयास पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने अंतरिक्ष का भी जो सेगमेंट है वो भी हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि एक अंतरिक्ष एक ऐसा चीज है जो हम लोग प्रत्येक दिन देख रहे हैं। वैसे पढ़ने का तो हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन वो सब चीजें तो प्रत्येक दिन दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तारा दिख रहा है, चांद दिख रहा है और कई सारी चीजें हैं जो समय समय पे अखबारों में नई खोजों के बारे में प्रकाशित होता रहता है। तो बच्चों को वो सब थोड़ा सा लगता है कि ये सब काफी मुश्किल चीजें हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को इन सब चीजों को पहले बेसिक सिखाते हैं और फिर बेसिक सिखाने के बाद बच्चों को इन सब प्रतियोगिताओं में भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समय समय पर इस तरह का प्रतियोगिता निकलता है जिसमें अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी होते हैं, टास्क होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो शुरू में तो बच्चे सिलेक्शन नहीं होते लेकिन वो फिर बाद में पकड़ लेते हैं कि उनमें क्या कमी है, किस कारण से अंक जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है, फिर उस तरह के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और फिर वो सिलेक्शन होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बताना चाहेंगे, हमारे पास एक स्टूडेंट पढ़ रहा है शुभम दोराईमोल के, तो अराउंड वो 6-7 से पढ़ रहा है और अभी वो 10th में गया है। तो उसको भी जब हम लोगों ने तैयारी कराना शुरू किया तो शुरू में तो शायद बच्चे को भी नहीं लगा होगा कि उसका भी कभी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब वो 8th क्लास में पहुंचा तो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इस्ट्रोनेरा की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जो कि इंटरनेशनल लेवल का था। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को उसमें तैयारी किया और फिर हम लोगों ने भी उसमें अप्लाई किया तो फिर आश्चर्यजनक रूप से बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और बच्चे का जब इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोग्राम था वो हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुआ था और वो वहाँ रिप्रेजेंट किया था। तो ये एक अच्छा उपलब्धि था कि एक जो आम गांव का बच्चा जो गांव में रह के पढ़ाई कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। फिर जब वो वहां गया तो वहां हमने देखा कि 10th से नीचे में एकमात्र वही है सिलेक्शन होके डेलीगेट के रूप में गया है, बाकी तो सभी कॉलेज के हैं और प्रोफेसर लोग भी है। तो वो काफी उत्साहित हुआ और वहां पर भी जो भी और भी डेलीगेट सिलेक्शन होके आए थे उन लोगों ने भी इसे उन्हें काफी अप्रिशिएट किया। और फिर जब वो वापस आया ये सब अनुभव को लेकर और जब वो दूसरे छात्र छात्राओं को इसके बारे में बताया तो उन लोगों को भी अच्छा लगा, काश हम वहाँ जाते हैं तो हमें भी ये चीज देखने को मिलता, सीखने को मिलता। क्योंकि आप जब एक कार्यक्रम में जाते हैं तो बच्चा सिर्फ केवल उस प्रोग्राम के बारे में नहीं सीखता है बल्कि वो जिस जगह जा रहा है, जैसे वो जो जगह है वो तो हिमालय का क्षेत्र है तो उन्हें हिमालय देखने को मिलेगा, फिर वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिलेगा, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं उनके अनुभव सुनने को मिलेगा, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगा, तो ये सब भी वो सीखते आ रहा है। फिर रास्ता में नई नई चीजें दिख रहा है, ट्रेन में, बस में, वो सब सफर दिख रहा है। तो मतलब वो एक काफी एक आनंददायक चीज हो जाता है पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई को अच्छा ढंग से रखते हुए जब एक सिलेक्शन होता है तो काफी अच्छा लगता है और बाकियों को भी तो प्रेरणा मिलता है कि उन्हें भी जाने का मौका मिला, उतने इस प्रकार का फैसिलिटी दिया गया, इतने अच्छे स्टार होटल में भी रहने का जगह दिया गया। तो इस तरह की चीजें होती है तो बच्चे जुड़ते हैं। फिर उस प्रतियोगिता के बाद हमने देखा कि और जो भी बच्चे थे उनके जूनियर थे वो लोग भी इस क्षेत्र में आगे आए और वो भी अभी सिलेक्शन हो रहे विज्ञान की प्रतियोगिता में और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर बीच बीच में पहुंच रहे हैं, सिलेक्शन होकर जा रहे हैं। तो ये एक माहौल सा बन गया है। तो जब एक अच्छा माहौल किसी जगह में रहेगा, किसी गांव में या किसी जगह पर, तो बाकी बच्चे भी उसमें जुड़ना पसंद करते हैं, उन्हें भी लगता है कि हमें भी इसका पार्ट होना चाहिए, तभी वो मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं।
1: प्रधान जी, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, वो है नशा पान
0: जी।
1: तो उसके बारे में बताइए, कैसे छोड़े हमारे बच्चे?
0: जी हाँ, तो ये जो समस्या थे वो बहुत पहले के, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत पहले इस तरह की समस्याएं नहीं थी जिस तरह अभी ये समस्या आम तौर पे दिख रही है। जब भी आप शाम को कहीं जगह से गुजरेंगे तो

0: कुछ बच्चे आपको रोड पे इस तरह से मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी यही है कि गार्जियन को जागरूक रहना पड़ेगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब खाली हैं तो फिर वो रोड की तरफ निकल जाते हैं, वो या कोई खाली स्थान देखने निकल जाते हैं। तो बच्चों को किसी अच्छी चीज में इंगेज करा के हम लोग रख सकते हैं, या तो पढ़ाई हो सकता है या फिर कोई एक हेल्दी स्पोर्ट्स, जिसमें भविष्य में स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा भी जॉब मिल सकता है, उसमें भी हम उसको इंगेज कर सकते हैं, या फिर घर के कुछ अच्छे एक्टिविटी जो हो रहा है उसमें इंगेज कर सकते हैं। तो बच्चा जब किसी जगह इंगेज रहेगा तो वो जो नशापान है उससे वो थोड़ा सा दूर भागेगा, या उसको हम लोग किसी ट्यूशन में भी बच्चे को हम लोग दे सकते हैं, कोचिंग में भी दे सकते हैं, या फिर किसी एजुकेटेड व्यक्ति के मेंटरशिप में दे सकते हैं। तो जब बच्चा इंगेज ही रहेगा तो उनको ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं तो वो सब करने के लिए उनके पास समय नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे वो उससे दूर होते जाएंगे। और पेरेंट्स भी बीच बीच में बच्चे पे निगरानी करते रहे, उन्हें काउंसिल करते रहे कि ये सही है ये गलत है, इस तरह का जब उनमें तुलनात्मक रूप से बताएंगे और इनका सेवन से भविष्य में किन किन प्रकार की समस्याएं होंगी, किस किस प्रकार की बीमारियां होंगी, किस तरह जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, जब इन सब चीजों का ज्ञान उन्हें होगा तो निश्चय ही वो जरूर छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब का जागरूकता बच्चों में नहीं है, क्योंकि उन्हें जो चीज आसान लगता है, जो चीज बाकी लोग कर रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगता है, तो उस दिशा में जा रहे हैं। तो अगर समाज के लोग इस दिशा में आगे आए और जो दुकानदार भाई लोग हैं या जो भी लोग हैं वो इस तरह की चीजें बच्चों को नहीं दे या अपने क्षेत्र में बेचे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक रोकथाम हो जाएगा। जब लोग बेचेंगे ही नहीं तो फिर बच्चों को मिलेगा ही नहीं, तो बच्चों को नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी पॉजिटिव चीज में अपने आप को लगाएंगे। और जैसे शाम का समय है तो उस समय स्पोर्ट्स हो सकता है, तीरंदाजी हो सकता है, या हॉकी सीख सकते हैं, क्रिकेट सीख सकते हैं, चेस सीख सकते हैं, बैडमिंटन सीख सकते हैं, इस तरह की भी पॉजिटिव चीजें हैं। उसके बाद बच्चा जब घर में आए तो उन्हें पढ़ाने के लिए बैठा दीजिए या फिर उन्हें कुछ याद करने के लिए दे दीजिए, तो फिर वो बच्चा खाली नहीं रहेगा। तो इस तरह का एक इनिशिएटिव अगर हर घर में शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं एक बदलाव समाज में देखने को मिल सकता है।
1: जी हाँ, तो प्रधान जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों और शिक्षा के ऊपर में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: इस संदेश के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम विविधा भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म पत्थर के सनम के इस गीत से, मोहम्मद रफी के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म निगाहें का ये गीत मोहम्मद अजीज के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरो से, रेशमा और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम में रसरंजन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुकाबला से, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। सुनते हैं अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

ये आकाशवाणी का चाय बासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मोहब्बतें के इस गीत से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म मोहरा का ये गीत पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुझसे शादी करोगी। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

अभी आपने सुना फिल्म जन्नत का ये गीत के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म पीके का ये गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस संदेश के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं। भारत ने आज सुबह 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में जोड़ लिया, जिसमें एक रिकॉर्ड बना। 44 साल बाद भारत ने मैराथन में पदक जीता। जी हां, भारत के सावन बरवाल ने मेंस मैराथन 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में समाप्त करके सिल्वर मेडल जीत लिया। ये एक नेशनल रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने बनाया है।
1: And in case you missed out on our first update, Joshna Chinnappa and Senthil Kumar in squash mixed doubles have won a bronze medal. And the other silver medal has come from the shooting range, where in the 50-meter three position, the trio of Ashi Choksi, Tilotuma Sen and Vidarsha Vinod have won the silver medal in the women's team event. The individual event also just came to an end.
0: Ji, bilkul, mahilaon ki 50 meter three position, yani three P shooting spardha mein Bharat ko vyaktigat padak nahi mil saka. Tilotuma Sen chauthe sthan par rehkar padak se chook gayi, jabki Vidarsha Vinod panchve sthan par rahi. Tilotuma ka 9.4 ka shot unke

0: ये भारी पड़ा और इसी वजह से वो पोडियम पर नहीं पहुंच सकी।
1: बट देर इज द होप ऑफ अ गोल्ड मेडल विच कुड बी कमिंग इन अबाउट 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। 2 मिनट्स रिमेनिंग ऑन द क्लॉक इन द वुमेन्स कबड्डी फाइनल एंड इंडिया आर अप अगेंस्ट ईरान इन दैट पर्टिकुलर फिक्स्चर एंड इंडिया इज करंटली लीडिंग बाय 35-30। रिमेंबर दे वेंट इन टू हाफ टाइम विद इंडिया हैविंग अ लीड ऑफ 22-16। हाउएवर ईरान केम रोरिंग बैक इन द सेकेंड हाफ। However, 2 minutes, a lot of time in kabaddi, anything could happen, so we will keep our eyes on that.
0: जिस तरह से कबड्डी में उठा पटक जारी, जिस तरह से रोमांच बना हुआ, इसी तरह से बैडमिंटन में हमने एक रोमांचक मुकाबला देखा। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला एकल के दूसरे दौर में मलेशिया की वोंग चिंग लिंग को 2-1 से हरा दिया। उन्नति ने पहला गेम 21-14 से जीता, दूसरे गेम में उन्हें कड़ी टक्कर मिली और वह 20-22 से हार गई। इसके बाद मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा। तीसरे गेम में उन्नति ने धैर्य बनाए रखा और 21-19 से गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अब उन्नति हुड्डा आज दोपहर 1:30 पर तीसरे दौर में इंडोनेशिया की वरदानी पुत्री कुसुमा के खिलाफ उतरेंगी।
1: Yes, and eyes will also be on PV Sindhu, who will be in action later on. Meanwhile, Ayush Shetty has also won his match in the second round and has progressed further. Remember, the doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be in action as well. Then moving on to boxing, a bit of a sad news coming from the boxing ring. Jadumani Singh, a lot of hopes were riding on him, but however, in the men's 55 kilogram category against an opponent from Philippines, he has gone down 3-0. Meanwhile, we are still waiting for the bouts of Kapil Pokhriyal and Priya.
0: जी हाँ, ई स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ई स्पोर्ट्स से भी कुछ अच्छी यानी बेहतर खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से ई स्पोर्ट्स में भारत का प्रदर्शन अब तक रहा उस पर बात करें तो भारतीय ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी परितोष को पुयो पुयो चैंपियन जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का उनको सामना करना पड़ा, उन्हें डेंगशिन कॉन्ग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से हराया। इस हार के साथ परितोष का टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल का जो सफर था वो यहीं थम गया है।
1: Right, so with that, India now have 2 gold medals, 11 silver, 13 bronze, a total of 26 medal. And as we told you, another gold medal is on the horizon. The women's kabaddi team is in action with 15 seconds to go on the match clock. India is leading by 37-33. Iran is hoping for a quick turnaround in the last few seconds, but hopefully India will come out up on top and win the gold medal. Remember, the men's team will be in action a little later against Iran as well in the gold medal match. And just as we say that, India have won in women's kabaddi. They have won the gold medal. The match has come to fruition. Congratulations to all Indian fans. The 3rd gold medal in Asian Games 2026 has arrived.
0: बिल्कुल, बेहद शानदार प्रदर्शन किया भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। लेकिन चलते थे एक और खबर देते हैं। आयुष शेट्टी यहां मुकाबला जीत गए बैडमिंटन में। जी हां बिल्कुल, कजाकिस्तानी जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे उन्हें 21-7 से हराकर जीत हासिल की है।
1: राइट, वी विल बी बैक विद मोर अपडेट्स। वी विल मीट यू अगेन एट 12:30 PM। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर कार्यक्रम जोहार रांची आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: कार्यक्रम जोहार रांची लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा
7: और मैं हूँ विनोद
3: और आप सभी को हमारा नमस्कार
7: जोहार
3: जोहार और कैसे हैं आप?
7: बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अगर कुछ बातों को छोड़ दी जाए, खासकर मतलब कि मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है पिछले कम से कम एक आध हफ्ते से, और जो हम लोग सुन रहे हैं कि जो अर्णव चक्रवात है और बंगाल की खाड़ी में जो जिस तरह से तांडव कर रहा है, तो उसका असर केवल देखा जाए तो ओडिशा ही नहीं, हमारे जो पड़ोस के राज्य हैं बिहार झारखंड बंगाल सभी जगह प्रभावित है और रह रहकर बारिश हो रही है। लेकिन ये भी जरूरी है, मौसम के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए तभी उसमें आनंद आता है।
3: और इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना इस प्यारे से गीत के साथ किया जाए।
7: बिल्कुल।

0: आपका जोहारांची में एक बार फिर स्वागत है। और अब पूजा हम लोग बात करते हैं सुविचार पर।
1: बिल्कुल, और आज का सुविचार है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। और आशा की तरह ही छोटी सी किरण भी जीवन के बड़े से बड़े अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर ठीक उम्मीद ही है ऐसी कि उम्मीद, लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास उम्मीद है, आपके पास आशा है, तो आप उसके सहारे बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं। और जिस समय मतलब कि उम्मीद आपकी टूट जाती है, समझ जाइए कि आप वहीं पे परास्त हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आशान्वित रहिए और आगे बढ़ते रहें।
1: बिल्कुल।

0: और अब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं मौसम का।
1: हाँ बिल्कुल। और ये तो आज यानी कि 26 सितंबर 2026 को रांची में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी और बादल छाए रहने की ही संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री है।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी की बात हम लोग करें तो बारिश और वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेज हवा के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है, इसलिए अपना और अपने सेहत का ध्यान रखें, खासकर खान पान का ध्यान ज़्यादा रखें और बारिश के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि
1: क्योंकि इस दौरान बीमारियां आसानी से फैल जाती हैं और इसीलिए छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे कि साफ पानी पीना, उबला हुआ या आरओ का ही पीना, बाहर के खाने से बचे, बासी
0: बिल्कुल
1: खाने से बचे, रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने भोजन में विटामिन सी भरपूर युक्त चीजें शामिल करें जैसे नींबू, आंवला वगैरह, और स्वच्छता का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखें, खुद को सूखा रखें, मच्छरों से बचाव करें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, घरेलू व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और ये सभी ये छोटी छोटी आदतें जो बरसात के मौसम में पूरा आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम अपना खान पान और साफ सफाई के प्रति सतर्क रहेंगे। थोड़ी सी सावधानी हमारे शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती है।
0: बिल्कुल।
2: लेट्स स्टार्ट द फन।

0: तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के पन्ने को पलटते हैं कि आज के दिन में क्या है खास, और सबसे पहले ये जानते हैं कि 26 सितंबर यानी कि आज के दिन किस महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1932 को हुआ।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और अगर आज की ही बात करें तो पूजा, एक और जो महान व्यक्तित्व थे उनका भी आज जन्म हुआ था,
0: बिल्कुल
1: और उनका नाम है, शिक्षाविदो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका जन्म 1820 में आज के ही दिन हुआ था।
0: और बॉलीवुड के सदाबहार और दिग्गज अभिनेता देव आनंद साहब का भी जन्मदिन आज ही की तारीख को है।
1: बिल्कुल। और जब अगर बात आती है देवानंद जी की, तो उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, और लोग
0: बिल्कुल
1: ये कहते हैं कि भाई जब वो ब्लैक सूट में आते थे तो पूरा सभी लोग उस पे फिदा हो जाते थे, और भी बहुत सारी बातें हैं। और सही बात है कि देवानंद जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने न जाने सैकड़ों फिल्मों में के काम किया, और उस जमाने के अपने जितने भी अभिनेता अभिनेत्री की बात कह लें, सभी के साथ
0: बिल्कुल
1: उन्होंने काम किया। और कई इनके जो फिल्म इनकी जो फिल्में हैं पूरी यादगार फिल्में हैं, और बॉक्स ऑफिस पर

0: उसने अपना कमाल
1: धमाल मचाया
0: बिल्कुल
1: है।
0: धमाल मचाया है। और चाहे वो उस जमाने के संगीतकार हो या फिर गीतकार हो, कोई भी ऐसे शख्स नहीं थे जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है,
1: और सभी उनके साथ काम करने के लिए भी इच्छुक रखते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए सुनते हैं इन्हीं की
0: फिल्माया हुआ एक
1: प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रमुख दिवस और उत्सव पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज है वर्ल्ड डेफ डे, यानी कि मूक बधिर दिवस। बधिर

0: हिंदूवादी जो देश हैं वहाँ जो लोग रहते हैं सभी लोग वहाँ गया कर अपने जो
1: पूर्वज
0: पुरखों
1: को।
0: हैं
1: हाँ
0: पूर्वजों हैं उनके लिए मैंने पिंड दान करते हैं। तो ये महत्ता है और जिसकी शुरुआत पूजा ने कहा कि
1: आज
0: शुरू
1: से हो
0: हो
1: गई
0: गया
1: है।
0: है।
1: बिल्कुल।

0: तो हमने इतनी सारी प्रमुख चीजों की बात की, और अब हम कहीं घूमने चलते हैं और अपने श्रोताओं को भी ले चलते हैं और अपने रेडियो के माध्यम से घूमने चलते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से छुट्टियों की भी शुरुआत होने वाली है।
1: बिल्कुल, और खासकर अभी जो बरसात का मौसम है, तो देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हर मौसम का आनंद उठाया जा सकता है। और जहाँ तक तो हमारे झारखंड की बात है कि झारखंड की जो वादियाँ हैं वो अगर अन्य राज्यों से अगर हम तुलना करते हैं, हम हिमाचल से भी तुलना कर सकते हैं इसकी, तो कहीं भी अगर देखा जाए तो उसमें जो हमारी जो है यहाँ की जो समृद्धि है वो किसी भी स्तर पे कम नहीं है,
0: बिल्कुल
1: बशर्ते कि आप इसे किस तरह से लेती हैं। और खासकर जब अगर बरसात की बात आती है तो जहन में सबसे पहले बात यही आता है यहाँ के जलप्रपातों की।
0: बिल्कुल, और इसे जलप्रपातों की नगरी इसीलिए तो कहा जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और कोई एक दो नहीं, अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि दर्जन भर यहाँ पर कम से कम ऐसे जलप्रपात हैं जिसका
0: बिल्कुल
1: लोग खासकर मतलब कि दूर दूर से लोग इसका लुत्फ उठाने आते हैं। और इसी में खासकर जो एक दशम जलप्रपात है, ये बहुत ही यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात है। और अगर हम बात करें तो रांची और जमशेदपुर जो मार्ग है, नेशनल हाईवे जो हमारा है, तो यहाँ से अगर रांची से करीब 35 किलोमीटर जब आप आगे जाएंगे तो तैमारा जो एक जगह है वो घाटी भी है। पहले तो बहुत संकरा हुआ करता था और अभी तो बहुत बढ़िया फोर लेन हो चुका है। वहाँ से करीब 10 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे तो दशम फॉल मिलता है। और अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र का ये सबसे जो हाईएस्ट कहा जाए, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला, करीब 144 फीट ऊपर से कांची नदी से यह जलप्रपात गिरता है। और अभी चूंकि बरसात का मौसम है तो वहाँ का जो अभी दृश्य अगर देखने की बात अब करें तो बहुत ही विहंगम होता है। लेकिन इसमें कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ हमारे जो उत्साही साथी हैं वो चले जाते हैं बिल्कुल वहाँ पर फॉल के नीचे, जहाँ की ढेर सारा मतलब कि पानी, और
0: पानी
1: बरसात
0: है
1: के समय तो
0: हाँ,
1: बहुत वहाँ
0: और
1: पर जल
0: गहराई
1: जमाव हो
0: भी
1: जाता है,
0: हाँ।
1: गहराई भी बहुत है। तो इससे बचने की आवश्यकता है कि आप आनंद लेने जा रहे हैं तो आनंद ही लें। और सबसे अच्छी बात है कि तो बहुत सारा वहाँ पे जो व्यू पॉइंट बना हुआ है, तीन
0: हाँ
1: चार व्यू पॉइंट बना
0: हाँ
1: हुआ है,
0: बिल्कुल
1: आप काफ़ी ऊंचाई से भी उसका आनंद उठा सकते हैं और आप नीचे जाकर भी आनंद उठा सकते हैं। पूरी तरह से आप सुरक्षित भी रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो व्यू पॉइंट है, और अभी अगर आप जाते हैं तो वहाँ से जो मतलब कि वो पानी की जो फुहारें हैं वो आप तक पहुँचेंगी,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: और आनंद लेने के लिए और क्या है,
0: और
1: हम
0: क्या
1: अपने
0: चाहिए।
1: जीवन क्यों खतरा में डालेंगे।
0: बिल्कुल, और भी जलप्रपातों की बात करें तो जिसमें लोद फॉल्स भी है, जिसे लातेहार जिले के मड़ुआ टाट ब्लॉक में बूढ़ी नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 140 मीटर के बराबर है। और साथ ही हुनरू जलप्रपात है जो रांची पुलिया मार्ग पर अनगड़ा ब्लॉक में स्वर्णरेखा पर स्थित है, जो रांची से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इसे भी घूमने जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसके लिए
0: और
1: बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
0: हाँ
1: अगर आप सुबह सुबह प्लान करते हैं तो समझ
0: घूम
1: जाइए कि आप शाम तक वहाँ से
0: के भी आ
1: घूम
0: जाएंगे
1: कर आ जाएंगे।
0: हाँ।
1: बिल्कुल।
0: और ये जोन्हा जलप्रपात है, गौतम धारा रांची पुलिया हाईवे पर राड़ू नदी पर स्थित है ये, और इसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था और ध्यान लगाया था। और यहाँ पास में ही भगवान बुद्ध की एक मंदिर भी है, इसकी ऊंचाई लगभग 141 फीट है, और इसके नीचे तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। और एक हिरनी फॉल्स भी है।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो ये लंबी श्रृंखला है, तो निश्चित है कि जो जीवन की जो एक रास्ता है, निरस्ता है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। तो कभी भी किसी भी दिन संडे को या फिर जब भी छुट्टियों के दिन इसका लुत्फ उठाया जा सकता है
0: हाँ
1: तो ज़रूर जाएं
0: जरूर
1: और
0: जाए,
1: घूम कर आएं।
0: और सावधानी के साथ।
1: बिल्कुल।

0: वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी चर्चा सड़क सुरक्षा पर भी करते हैं क्यों?
1: बिल्कुल, और यह बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है और इस पर बात होनी ही चाहिए। और क्योंकि अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल सिर्फ हम अपने झारखंड की बात नहीं करें, पूरे देश की भी अगर हम बात करते हैं तो दुर्घटनाएं बहुत घट रही
0: बहुत,
1: हैं।
0: और आज के आधुनिक युग में यातायात का साधन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं।
1: और बिल्कुल, इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही होती है, हमारे
0: हाँ
1: चालकों की भी लापरवाही होती है। और अगर देखा जाए तो ट्रैफिक रूल की अगर बात करें तो यातायात नियम सही ढंग से बने हुए हैं, उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगर केवल हाल फिलहाल की आप घटना की बात करें, जो 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है हमारी, जो झारखंड के जमशेदपुर में जो घटना घटी है, बहुत ही मतलब कि वो दुखद घटना है, जिसमें कि
0: बिल्कुल
1: 4 12th क्लास के 4 2 बच्चे और 2 बच्चियां का देहांत हो गया उसमें। और आप देख रही हो कि इधर जो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि वो सीधे मतलब कि सड़क किनारे ट्रक खड़े
0: हाँ
1: हैं, जाकर गाड़ियां उससे टकरा जा
0: टकरा
1: रही
0: जा
1: हैं।
0: रही हैं,
1: तो एक
0: और
1: तो
0: रफ्तार
1: बिल्कुल
0: पे
1: रफ्तार,
0: नियंत्रण बिल्कुल नहीं है।
1: और फिर उसमें नशा नशा का सेवन की भी बात होती है
0: बिल्कुल
1: कि उसको, तो इसके कारण भी दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है और हमें सोचना चाहिए कि जीवन अनमोल है, और जहां भी अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई, आप सड़क पर हैं, कहीं भी किसी चीज से टक्कर हो सकता है, तो चले और आराम से चले। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पीड में हैं तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: बमुश्किल मतलब कि 4-5 मिनट की बात होती है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने में, और अगर थोड़ी सी उसमें लापरवाही कर दे तो पूरा आप समझ सकते हैं कि कितना
0: बिल्कुल,
1: बड़ा
0: और
1: हादसा हो जाता
0: सड़क
1: है।
0: सुरक्षा जीवन रक्षा एक नारा नहीं है बल्कि सबकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वाहन को अत्याधिक गति से चलाना, लापरवाही, मोबाइल का उपयोग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन से बात करना, मैसेज भेजना, ये बहुत प्रमुख कारण हो जाता है दुर्घटना का। शराब पीकर गाड़ी चलाना नशे की हालत में, यातायात के नियमों को तोड़ना, हेलमेट नहीं पहनना, ड्राइविंग सीट पर

0: पर बेल्ट नहीं लगाना, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना, ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करना, हेलमेट, सीट बेल्ट और जेब्रा क्रॉसिंग, सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल को देखकर ही पार करना चाहिए। तो ये सब होती है छोटी छोटी आदतें जो सब भूल कर परिवार को उम्र भर की दर्द दे देते हैं।
1: बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही है कि जब आप सड़क पर होते हैं तो सावधानी बरतें, सही ढंग से गाड़ी चलाएं और जीवन को सुरक्षित रखें।
0: बिल्कुल।

0: और पूजा, चलते चलते कुछ एशियन गेम्स की बात।
1: बिल्कुल,
0: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में शुक्रवार को भारत ने पदकों का छक्का लगाया। देश ने निशानेबाजी में स्वर्ण के साथ टेबल टेनिस और एथलेटिक्स में 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। देश के लिए इन खेलों में यह सबसे सफल दिन रहा। एथलेटिक्स ट्रैक पर गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और मनप्रीत कौर ने महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
1: बिल्कुल, और बर्निका इंग्लोगोलपोल ने वॉल्ट में कांस्य पदक जीतकर एशियाई खेलों को इस स्पर्धा को में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो
0: इन सभी को देते हैं शुभकामनाएं
1: और बहुत बहुत बधाई।
0: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां जो है इशारा कर रही है कि अब कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ गया है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें
1: और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। इसी के साथ
0: नमस्कार,
1: नमस्कार और जोहार।
2: Iceberg Zoo. Iceberg Zoo.
3: Oh, my hair.

कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, और आवाज़ें अन्वेषा विनीत सिंह हर्षदीप की, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने और शब्द रचना इशाद कामिल का। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने, आप है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश का ये गीत।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दबंग दबंग से, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और शब्द रचना जलिस सिरवानी का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है औरंगाबाद से राजेश पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश पर ये गीत।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आवाजें सलीम, नीति मोहन और शेखर की, शब्द रचना अन्विता दत्त का और सुरों से सजाया है विशाल और शेखर ने। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश पर ये गीत।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म रॉकी और रानी से, आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, संगीत से सजाया है प्रीतम ने और शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य का।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सैयारा से आवाजें विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की। संगीत से सजाया है विशाल मिश्रा ने, शब्द रचना राजशेखर का।

0: बहनों नमस्कार। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मकान को घर और दीवारों को मंदिर बनाता है वो परिवार का प्यार ही है, जो हमें जीना सिखाता है और अपनों के संग प्यार के साथ।
1: बहनों मह जमीन का भी प्यार भरा नमस्कार। और सुमन ने ठीक कहा है कि मकान एक प्यार ही है, जो वो जिस तरह से एक घर बनाता है वो प्यार है। और सही में सभी का प्यार ही उस घर को मकान से प्यार, जो घर बनाता है ना वो उसकी बात ही अलग है। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। दुनिया में जहाँ हंसता खेलता परिवार हो, कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है।
0: बिल्कुल सही कहा मह जमीन। किसी भी परिवार और देश की उन्नति में सीमित और एक नियोजित जो परिवार होती है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और सही प्रगति का आधार भी होता है। जब कोई अपने घर में बच्चों का बेहतर, एक परिवार छोटे परिवार में बेहतर पालन पोषण और सही शिक्षा दीक्षा दी जा सकती है और साथ ही पढ़ाई लिखाई और उच्च शिक्षा देने की सभी जो तमाम चीज़ें हैं या बेहतरीन तरीके हैं उन्हें भी पूरा किया जा सकता है।
1: हाँ,

0: मानसिक तनाव और कोई भी कलह की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। माता पिता अपने बच्चों को भरपूर समय दे पाते हैं, है ना, और बच्चों का जो जीवन में वो क्या कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, उनकी अच्छी परवरिश और उनके जो भी दैनिक कार्य हैं बच्चे के, उन पे अच्छे से निगरानी कर सकते हैं, अच्छी देख रेख हो सकती है और बच्चे भी अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं परिवार में और अपने परिवार को बहुत ही अपने करीब पाते हैं, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, शिक्षा और साक्षरता और सही ज्ञान ही प्रगति का जो सबसे पहला आधार होता है ना, तो वो शिक्षा, जिससे कि बल्कि जीवन जो सही निर्णय और लेने की बात होती है, आत्मनिर्भर बनने की बात होती है, भी एक दिशा प्रदान भी करती है। यानी कि कहा जाए तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है परिवार के लिए, जो एक छोटे परिवार में आसानी से अपने बच्चों को हम दे सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है कही आपने। बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलती है और माता पिता बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें समझकर उन्हें पर्याप्त समय भी दे पाते हैं, और छोटा परिवार एक सुखी परिवार केवल व्यक्तिगत अपनी खुशी तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे जो देश है राष्ट्र के निर्माण में और देश के विकास में भी काफी मददगार होता है, और हमारे पास में जो भी संसाधन है उन पर काफी कम दबाव पड़ता है ना।
1: पानी हो, जमीन, अनाज हो या रोजगार, ये सब आसानी से पूरा हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में सुधार भी होती है, यानी कि इस तरह से देश के आर्थिक रूप से मजबूत होता है और अच्छी शिक्षा और संस्कार भी होते हैं। छोटे परिवार की जो भी जिम्मेदारी होती है ना, वो खुशहाल होती है और कुशल नागरिक बनते हैं।
0: बिल्कुल आज की दुनिया तेजी से बदल रही है ना महजवीन, तो जीवन की जो रफ्तार है वह भी बहुत तेज है, तो इसमें जैसे कि खर्चों का बोझ देखो कि काफी बढ़ गया है, लोगों को नौकरी की भी चिंता बहुत होती है, साथ ही साथ बच्चों का देखभाल भी है, पालन पोषण है, और हर परिवार के लिए ये आसान नहीं होता है। ऐसे में अगर हमारा परिवार छोटा है तो इन सभी मुश्किलों की वो संभालना हमारे लिए आसान होता है ना। और छोटे परिवार में महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, हम कह सकते हैं कि बच्चों को पूरा समय देने के साथ साथ अपने जो घर की महिलाएं वो करियर, पढ़ाई या किसी भी शौक, जो भी उनके अधिक शौक है उसे वो पूरा कर पाती हैं। और आज की महिलाएं तो सिर्फ घर की चारदीवारी में सीमित नहीं हैं, वो बाहर भी सारे कार्य कर रही हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसे पूरा कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, एक सशक्त महिला बन रही हैं, तो ये सब कुछ कर पाना उनके लिए संभव होता है। ये अगर परिवार छोटा है तो वो परिवार को भी अपना पूरा समय दे सकती हैं, उसे भी सही तरीके से मैनेज करती हैं और बच्चों को भी समय देती हैं और अपना जो भी करियर उन्हें बनाना है लाइफ में उसे भी पूरा कर लेती हैं, है ना।
1: बहनों, छोटा परिवार सुखी परिवार केवल एक नारा नहीं बल्कि बेहतर जीवन का आधारशिला भी है। छोटे परिवार में जो भी माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, अच्छे संस्कार पर ध्यान देते हैं, अधिक और जिस तरह से कहा जाए कि वो हर चीज पर ध्यान देते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है, किस तरह की बातें होनी चाहिए, किस तरह के संस्कार होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि देखा जाए तो छोटा परिवार हर तरह से अच्छी जिंदगी जीने की तरफ जाते हैं और शिक्षा भी पाते हैं।
0: बिल्कुल, खुशियों का खजाना कह सकते हैं हम इन्हें, है ना। और देखो कि छोटा परिवार जो है बिल्कुल संतुलित होता है और इनमें जो संबंध है वो भी काफी मजबूत होते हैं अपने पेरेंट्स और बच्चों में, और साथ ही साथ माता पिता भरपूर समय दे पाते हैं, बच्चों का जो भावनात्मक विकास होता है वो पूरी तरह से काफी मजबूत होता है ना। और इसमें मित्रवत और शिष्टाचार का जो ये होता है, ये सब भी सब कुछ बच्चे
1: बहुत
0: सीखते हैं, मायने रखते थे।
1: छोटे परिवार रहने से एक और खूबी है ना सुमन, कि आर्थिक स्थिति तो बेहतर रहती है, जैसे आपने की कहा कि स्थिति बहुत सुधरती है और सीमित संसाधनों का भी उचित उपयोग जाता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि जिस तरह से पर्यावरण पर भी दबाव पड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हम किस तरह से हम अपने परिवार को सीमित कर सकते हैं, तो ये अपने ऊपर है कि आप अपने परिवार को अगर छोटा रखते हैं तो खुशहाल तो रहेंगे ही, साथ में आप देश की तरक्की भी हिस्सा बनते हैं। यानी कि अगर आप परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं, देश को खुशहाल रखना चाहते हैं, तो इसे सीमित रखना ये हमारे भी ऊपर है बहनों, इस पर आप तवज्जो जरूर दें।
0: सही कहें, और देखिए कि समाज के दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो छोटा परिवार एक समुदाय और सांस्कृतिक समाज की स्थापना करता है ना। और जब हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी तरह से एक संस्कार देंगे, एक पालन पोषण करेंगे, तो भविष्य में हर वो जो बच्चा है एक अच्छा नागरिक बनेगा और ये हमारे देश के लिए, हमारे

0: राष्ट्र के लिए भी हितकर होगा, है ना?
1: बहनों, बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जिस तरह हमने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए परिवार छोटा रहे तो सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, प्रगति का जो महत्वपूर्ण आधार है ना, तो वो भी इस छोटे परिवार पर ही रहेंगे। वो देश उतना ही खुशहाल तरक्की बनेगा जब हम छोटा परिवार रखेंगे और छोटे परिवार को जो सही परवरिश है वो दे पाएंगे। और इस तरह से एक अच्छे परिवार की भी यही बात होती है कि परिवार को सीमित रखी जाए ताकि देश हित में भी ये काम करे। तो बहनों, हम आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और हमारा देश जहाँ विविध संस्कृति परंपरा और पहनावा साथ ही खान पान सब कुछ अलग है ना?
5: इन सब बातों के बावजूद सुमन पता है भारतीय पकवान की अलग ही पहचान है। चटपटा, तीखा, मीठा और भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन। यहाँ हर राज्य में जो अलग अलग राज्य है हर क्षेत्र में विशेष पकवान है जो वहाँ की जलवायु और जीवन शैली को भी दर्शाते हैं।
4: बिल्कुल बहनों, पकवान केवल हमारे जीवन का भोजन का साधन नहीं है बल्कि प्रेम, अपनापन और खुशियों का भी प्रतीक है। चाहे हमारे यहाँ विवाह हो या जन्मदिन हो या फिर किसी भी अन्य विशेष कार्यक्रम हो, हर जगह भोजन का एक खास पारंपरिक तरीकों से मेहमान का स्वागत करना, उन्हें भोजन परोसना एक परंपरा रही है ना? जब भी किसी खास ओकेजन में हम किसी भी मेहमान को बुलाते हैं तो उनके लिए खान पान की व्यवस्था जरूर करते हैं
5: और अपने जो हमारे जो खास होता है ना डिश हमारे यहाँ का उसको जरूर हम बनाते हैं।
4: बिल्कुल
5: बहनों, आज है शनिवार, आज महजबीन यानी कि मेरी रसोई में कौन से पकवान की रेसिपी है आइए हम बताते हैं। बहनों त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है और हर घर घर में तरह तरह के पकवान की तैयारी होने लगती है। आइए हम आपको अपनी किचन में जो रसगुल्ला की रेसिपी है ना उसे बताते हैं।
4: बिल्कुल, क्योंकि बिना मिठाई के कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता है, अधूरा होता है ना?
5: तो रसगुल्ला एक प्रसिद्ध मिठाई है या छेना और चीनी की चाशनी से बनाया जाता है। घर पर इसे आसानी से भी आप बना सकती हैं। जानते हैं कैसे, आइए लिखिए इसे। सामग्री है छेना बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2-3 बड़े नींबू का रस या सिरका, 2 बड़े चम्मच पानी, नींबू का रस और मिलाने के लिए थोड़ा ठंडा पानी भी चाहिए। इसे एक बार आप और सुन लें। छेना बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 2-3 बड़े नींबू का रस या सिरका, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस मिलाने के लिए और ठंडा पानी। बहनों चाशनी के लिए 2 कप चीनी, 5 कप पानी, 2-3 इलायची। इसे आप रेडी करके रख लें। सबसे पहले एक बर्तन में दूध गर्म करें, उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें। नींबू के रस में पानी 2 चम्मच मिलाकर धीरे धीरे दूध में डालें। दूध जब आप देखें कि फटने लगे तो छेना और पानी अलग हो जाएं। अब इसे एक मलमल के कपड़े से छेना को छान लें। नींबू का खट्टापन दूर करने के लिए ठंडे पानी से इसे धोएं। लगभग 30 मिनट तक इसे आप लटकाकर रख दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब बारी आती है गूंधने की। 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर चिकना करें इस छेने को और अंत में जब इसे आप देखें कि ये चिकना होने लगे यानी कि कुछ हल्का सा मक्खन जैसा यानी कि चिकनाहट आ जाए तो आप छोटे छोटे गोले बनाएं। ध्यान रहे कि इसमें दरार बिल्कुल भी ना हो।

0: कि जिसमें सॉस, जैम और अन्य उत्पाद रखें जिनके लेवल पर दरवाजे की रखने की होती है।
1: बिल्कुल। और देखो, किचन अगर छोटा है हमारा तो उनकी दीवारों पर हम हैंडिंग रैक या हुक लगा सकते हैं, और जो कप है, कलछी हैं या जो भी पैन वगैरह होते हैं उन्हें टांग सकते हैं। साथ ही साथ कैबिनेट के अंदर प्लेट्स एक के ऊपर एक करने के बजाय प्लेट होल्डर के रैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और किचन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम उनमें एक छोटे पौधे किचन की खिड़की या काउंटर के कोने में छोटा इंडोर प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट्स हुआ या कोई भी हल्की हर्ब्स को लगा सकते हैं, उनकी जगह बना सकते हैं। यह रसोई को एकदम ही फ्रेश और नेचुरल सा लुक देता है ना। और साथ ही साथ कैबिनेट के नीचे जो सबसे निचले हिस्से के कैबिनेट होते हैं उसमें LED स्ट्रिप्स लाइट्स को भी हम लगा सकते हैं, और इससे काम करने में भी आसानी होती है और किचन बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सुंदर सा उसका स्पेस और लुक आता है ना?
0: सुमन जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि जिस तरह से हम छोटे से किचन को किस तरह से रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने किचन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो बहनों, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। आइए, हम त्यौहार में गृह सज्जा कैसे करें इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं।
1: त्यौहार के समय में जब गृह सज्जा करना न केवल घर को खूबसूरत बनाता है बल्कि एक सकारात्मकता और कुछ खास एहसास भी दिलाता है, है ना। और भारतीय संस्कृति में हर त्यौहार का एक खास महत्व है, रंगों का, और साथ ही इसलिए हर त्यौहार में घर को सजाना जरूरी है।
0: और किसी भी त्यौहार में सबसे पहले जो कार्य होता है यानी काम होता है तो वो है साफ सफाई का, और साफ घर में ही सकारात्मकता का वास होता है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमें महंगे सामान का होना भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज से भी घर की सजावट कर सकती हैं।
1: बिल्कुल
0: सही, अगर प्लानिंग आके आपकी रही, क्रिएटिविटी रही, तो आपका घर और भी खूबसूरत हो सकता है।
1: सबसे पहले तो शुरुआत में ही दीवार को एक नया रूप दें, पेंट की जगह वॉलपेपर या टेक्सचर पेंट का प्रयोग करें, और काफी स्टाइलिस्ट मिलता है, और साथ ही साथ DIY आर्ट से पेंटिंग के डेकोरेटिव वाला प्लेट से भी दीवारों को हम सजा सकते हैं, है ना
0: बहनों। अब इसी के साथ अब दे हमें कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब महजबीन
1: और सुमन को दें
0: इजाजत। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं दर्पण तिकिया। तो चलिए इस घंटे की अपडेट की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के साथ, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हां, फाइनल में ईरान को 37-34 से शिकस्त दे दी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत ने ईरान को जिस तरह से हराया, उठा पटक वाले मुकाबले में, जो मुकाबले के पहले हाफ की बात करें तो भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। 22-16 से बढ़त के साथ ब्रेक पर गई। दूसरे हाफ में ईरान ने जोरदार वापसी की और भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखा। एक समय ईरान ने स्कोर को 27-26 तक पहुंचा दिया था। इस दौरान भारतीय टीम ऑल आउट भी गई। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने टाइम आउट के बाद अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया और मुकाबले को दोबारा अपनी पकड़ में बना लिया। खासकर आखिरी 5 मिनट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और ईरान को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। भारत ने अंततः मुकाबला 37-34 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। एशियन गेम्स में चौथी बार है जो भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में 2018 को अगर छोड़ दें, जकार्ता पलमबाग में जब एशियन गेम्स हुए थे, वहां न भारतीय महिला टीम ने न पुरुषों ने किसी टीम ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। वहां पर भारतीय टीम को शिकस्त मिली थी फाइनल मुकाबले में। उसके बाद से कोई भी मौका नहीं जब भारतीय टीम फाइनल न जीती हो। वहीं आज पुरुषों का कबड्डी में फाइनल मुकाबला ईरान से ही होगा, जब भारतीय टीम स्वर्ण पदक के लिए जोर आजमाइश करेगी। इसके अलावा बात करें तो कई और बड़े मुकाबले आने बाकी हैं दर्पण।
3: Absolutely. So one gold done in Kabaddi, the other one is awaited. However, it has been raining medals from all corners. First of all, the day started with a historic silver medal that was won by Savan Barwal in the men's marathon. Then we had another medal coming from the world of shooting, where in 50 meter three position rifle team event, the women's team event, the trio of Ashi Choksi, Vidarsa Vinod and Totalima Sen won the silver medal. Then we had Joshna Chinnappa and Senthil Kumar in mixed doubles in squash winning the bronze medal for India. And now a couple more medals have been confirmed in squash. Anahat Singh, just a few moments from now, had defeated her Japanese opponent in a semi-final where she was pushed to the brink. She lost the first two games and then averted 3 match points and came roaring back to win 3 games on a trot and enter the finale. She is now assured of at least a silver.
2: जी हाँ, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। भारत के अभय सिंह ने एशियन गेम्स के जो पुरुषों के एकल

0: को ऐश में फाइनल में जगह बना ली। जी फाइनल सेमीफाइनल जो मुकाबला था वहां पर अभय ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को सीधे गेमों में 3-0 से हराया निर्णायक। तीसरे गेम में अभय ने 11-6 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अभय का गोल्ड मेडल मुकाबला तय हो गया है, यानी कम से कम सिल्वर मेडल भारत के पास आना तय है।
1: राइट, सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम स्क्वॉश टू, एटलीस्ट सिल्वर्स आर कंफर्म्ड। वी विल होप दैट बोथ ऑफ देम गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड मेडल्स। हाउएवर करेंटली पीवी सिंधु इज इन एक्शन। इन फ्रंट ऑफ हर इज चाइनीज ताइपेज चिउ पिंचियान, हु इज रैंक्ड 17th इन द वर्ल्ड। रिमेंबर सिंधु इज ranked 11th in the world after a grueling first game. Sindhu was able to win it 21-19. The second game is currently going on and Sindhu is leading by 15-11. Ayush Shetty, who earlier won his second round match today, will be featuring in the third round against Chinese Taipei's Chao Tin Chen, who is, we all know, a big name. He has already 3 Asian Games medals to his name, so that will be a grueling fight.
0: वही बैडमिंटन में ही उन्नति हुड्डा महिला एकल के तीसरे दौर में और आयुष शेट्टी पुरुष एकल के तीसरे दौर में अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं।
1: Right, and then in the world of boxing, we have some good news coming. Kapil has won his bout, hasn't he, Shahid?
0: जी बिल्कुल, भारत के कपिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सैम एस्ताकी को 5-0 से हराकर एशियन गेम्स की बॉक्सिंग स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। कपिल ने पूरे मुकाबले में दबाव बनाए रखा और आखिरी राउंड में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई मुकाबला जीतने के लिए। कपिल का क्वार्टर फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा।
1: Right, and in the world of archery, the recurve women's team have qualified at the 7th position in the qualifying round. Of course, these are just the ranking rounds to decide how the fixtures would be laid out. And the trio of Kirti, Ankita Bhakat and Kumkum Mohod have had a mixed performance. Similar results in the compound men's team, where the team finished 3rd. However, our expectations are lofty from Sahil, Rajesh, Jadhav, Maniratnam, Ganesh and Kushal Dalal. Hopefully, they will come roaring back when the actual competition starts.
0: जी बिल्कुल, मुकाबला इधर चल रहा है, सामने हमारे बिल्कुल खेल रही है पीवी सिंधु, हालांकि अभी आगे बनी हुई लग रहा है। यहां पर सिंधु जीत जाएंगे, हालांकि पहला गेम उन्होंने जीता है, दूसरे गेम में 18-11 से आगे चल रही है। अगले एक घंटे में क्या कुछ होगा, आज अब से ठीक एक घंटे बाद 1:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और दर्पण तिकिया को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शैक्षिक प्रसारण, जिसमें हमारा आज का विषय है परमाणु युद्ध की विभीषिका और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। वार्ताकार हैं प्रोफेसर सनत कुमार और प्रस्तुति सहयोग है सुनीता कुमारी की, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।
1: समझते हैं कि परमाणु युद्ध है क्या। परमाणु युद्ध एक ऐसी सैन्य संघर्ष है जिसमें देश एक दूसरे पर परमाणु हथियारों से हमला करते हैं। परमाणु हथियार परमाणु प्रतिक्रियाओं पर बेस्ड होते हैं। अगर हम परमाणु हथियार को समझने की कोशिश करें तो ये अपनी ऊर्जा परमाणु प्रतिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं। परमाणु प्रतिक्रिया मीन्स न्यूक्लियर फेनोमेना, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियर फेनोमेना भी कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते। अगर सामान्य शब्दों में कहने की कोशिश करें, आप जिस तरीके से एक पानी की बूंद कितनी बड़ी हो सकती है, जैसे जैसे वो पानी की बूंद बड़ी होती जाती है वो अस्थिर होती जाती है और एक समय के बाद वो टूट जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एटम्स के साथ, परमाणु के साथ भी होता है। ये नाभिक, जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं, ये जब बड़ी होती जाती है, ये अपने इसमें एक तरह के चार्जेस रहते हैं जिसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स कहते हैं। इनके नंबर बढ़ते रहने के वजह से एक समय ऐसा आता है कि ये चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, ये इसको संभाल के नहीं रख पाते और ये दो भागों में टूट जाते हैं। ऐसा टूटने पर ये बहुत सारी ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं और यही ऊर्जा को आधार बनाकर परमाणु हथियार बनाए गए हैं। इस ऊर्जा को आधार रहकर जो परमाणु हथियार बनाए गए हैं उसे हम एटम बॉम्ब कहते हैं। एक और परमाणु प्रतिक्रिया है और वो है जब छोटे छोटे और सूक्ष्म नाभिक एक दूसरे से जुड़ के बड़े नाभिक बनाते हैं। ऐसा करने पर भी बहुत हद तक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह के प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है और इसको आधार रख के जो बम या परमाणु हथियार बनाए गए हैं उसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। ये काफी विनाशकारी हो सकता है। हाइड्रोजन बम का उपयोग आज तक कभी युद्ध में नहीं हुआ है। हालांकि एटम बम दो बार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। पहली बार वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, पहली बार 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर ये बम गिराया था और इस बम का नाम रखा था लिटिल बॉय। इसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप इसके विनाश का विवरण की समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि जब ये बम फटा था तो 70,000 से 80,000 लोग उसी वक्त मर गए थे या अपनी जान गंवा दिए और 1945 के अंत तक आते आते ये आंकड़ा बढ़ के 1.5 लाख तक पहुंच गया था। कुछ दिन उपरांत 9 अगस्त में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक दूसरा बम गिराया और उसका नाम रखा फैटमैन। इसमें सब कुछ सेम था, केवल जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया वो अलग था और इस बार यूरेनियम ना यूज करके उन्होंने यूज किया था प्लूटोनियम 239। इसके विस्फोट पर एक साथ 40,000 मौतें हुई और साल के अंत आते आते 1 लाख मौतें, ये बढ़कर 1 लाख हो गई। ये अब तक का हथियारों से विनाश होने वाली सबसे बड़ा आंकड़ा है। किसी भी हथियार से, किसी भी बम से इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई है। जब ये एटम बम गिरे थे, जब पहला एटम बम हिरोशिमा में गिरा था तो ये 13 वर्ग किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल नष्ट कर दिया और जब नागासाकी में दूसरा बम गिरा तो इसने लगभग 7 वर्ग किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल तहस नहस कर। जो बम यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर गिराया था वो 64 kg का था। आप सोच सकते हैं ये कितना विध्वंसक होगा। ऐसा नहीं था कि पूरे के पूरे 64 kg ही फिजन हो गया उनका। इनमें से केवल 1% ही यूरेनियम 239 का फिजन हुआ, टूटे, और जिसकी वजह से जो ऊर्जा निकली उसने इतना विनाश किया। जब भी परमाणु हथियार का एक्सप्लोजन होता है मुख्यतः 3 चीजें रिलीज होती हैं। पहला, बहुत हाई टेम्परेचर, क्योंकि इससे जो ऊर्जा जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये एक साथ जनरेट होने की वजह से इसमें बहुत भारी मात्रा में शॉक वेव्स जनरेट होते हैं। ये शॉक वेव्स ही है जो इतने बड़े एरिया को पूरी तरीके से नेस्तनाबूत कर देते हैं और हाई टेम्परेचर अपने सामने आने वाले और अपने प्रकोप में आने वाले सारी चीजों को पिघला देते हैं। ऐसा ही कुछ केवल 1% उस 64 kg में से केवल 1% यूरेनियम ही टूट के जो ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, बाकी यूरेनियम उसके वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा वो बाकी यूरेनियम को गला के वेपोराइज पूरा गैस में कन्वर्ट कर दिए, और ये जब ठंडा हुआ तो ये पूरे वातावरण में चारों तरफ जाके घुल गया और छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में पूरे एक बड़े एरिया में जाके डिपॉजिट हो गया। इसके वजह से चूंकि ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इससे एक बहुत ही हानिकारक किरणें या रेडिएशन जिसे हम कहेंगे वो निकलते हैं, जिसको हम गामा रेज कहते हैं, और इस वजह से ही इस बम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कहने का मतलब है इसके वजह से काफी दिनों तक पीढ़ी दर पीढ़ी इसका असर देखा जा सकता है, और यही हुआ हिरोशिमा और नागासाकी। उस वक्त जब ये बम फटा, जो बच गए उन लोगों में इन रेडिएशंस के वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ बहुत सारी विकृतियां आने लगी, जैसे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, उनमें कैंसर के लक्षण देखे पाए जाने लगे। इतना ही नहीं, पेट में पल रहे बच्चे भी, उनके ग्रोथ भी काफी हद तक इफेक्ट हुए, कि बच्चों के बच्चे भी इस इफेक्ट से अछूते नहीं रह सके। ये किरणें डीएनए तक को म्यूटेट कर देती है, जिसके वजह से ये एक हेरिडिटी इफेक्ट जनरेट करती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसमिट हो सकती है। अन्य कोई भी बम या एक्सप्लोसिव अपना इफेक्ट उस समय तक सीमित रखता है जब तक वो एक्सप्लोजन फॉर्म में है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, बट परमाणु बम का इफेक्ट कई पीढ़ियों तक चला जा सकता है। और ऐसा ही हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, और हिरोशिमा और नागासाकी में इसका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। अगर हम काउंट करें कि ऐसे कितने बम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बम कितना विनाशकारी है और हमारे पूरे रेस के लिए ये कितना हानिकारक है। अगर हम काउंट करें कि पूरे दुनिया में ऐसे कितने बम हैं, तो आधिकारिक रूप से लगभग 12,000 से 12,500 न्यूक्लियर बम

0: हमारे पास है, हम सब पूरे देशों को अगर मिला लें तो सब मिला के हमारे पास 12,000 से 12,500 तक के न्यूक्लियर बम है। इतना तो पता है कि परमाणु प्रतिक्रिया या न्यूक्लियर फेनोमेना एक ह्यूज एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स है। अगर हम किसी तरीके से इस पे काबू पा लें, इसको कंट्रोल कर लें, तो हम इसे काफी उपयोग में लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जो देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन है वो केवल इसे बम बनाने में ही इस्तेमाल करते हैं। इसे उन्होंने, इस फेनोमेना को उन्होंने अपने ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। देश जैसे यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, भारत, यूक्रेन, कनाडा, इनमें ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो इस न्यूक्लियर फेनोमेना पे काम करते हैं। अकेले यूएसए में, अमेरिका में ऐसे 94 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो 100 गीगावाट तक का पावर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। हमारे भारत में ऐसे 23 परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और इसकी कुल क्षमता लगभग 7 से 8 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की है। इसमें जो फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है, आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूल जिसके टूटने से ये ऊर्जा जनरेट होती है या प्राप्त होती है वो है यूरेनियम-239। लेकिन यूरेनियम-239 यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कभी भी प्योर फॉर्म में पाया नहीं जाता। यूरेनियम हमेशा उनके दूसरे आइसोटोप्स मोस्टली यूरेनियम-238 के साथ मिक्स होता है। ये सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन यूरेनियम-235 को तोड़ना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें तो, अगर हम तुलना करें यूरेनियम-239 से, यूरेनियम-238 को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और शायद आप भी जानते हैं भारत में झारखंड यूरेनियम का सबसे बड़ा मिनरल रिसोर्स है और ईस्ट सिंहभूम में इसके कई माइंस पाए जाते हैं जहां से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन माइंस में यूरेनियम पत्थरों के बीच पाए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि जैसे कोल माइंस में कोल को पत्थर की तरह तोड़ के हम उसको यूज में ला सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यूरेनियम भी पत्थर के फॉर्म में मिलता हो और उसे हम तोड़ के उसे अपने काम में लगा सकते हैं। ये दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होके उन माइंस में पाए जाते हैं। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें, आप ये कह सकते हैं कि ये यूरेनियम अगर इतना विध्वंसक है तो ये कहीं ना कहीं तो पृथ्वी में पाया जाता होगा, और अगर ये रेडियो एक्टिव है, इससे इस तरह के किरणें निकलते हैं तो ये हमेशा निकलते होंगे। ये बात सही है कि इस तरह के जो यूरेनियम-235 है, अगर आप नेचर को देखें, अपने प्रकृति को देखें, इससे बड़ा लैब, इससे बड़ा एडवांस लैब आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये यूरेनियम जिसको हम संवर्धन करके अब एटम बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम प्रकृति से ही ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने इसे इस तरीके से रखा है कि इसका दुष्परिणाम कभी भी हमारे ऊपर या अन्य जीवों के ऊपर नहीं पड़ता है। और यही इन माइंस में देखा जा सकता है। आप देखेंगे ये यूरेनियम उन पत्थरों के बीच ऑक्साइड के फॉर्म में, मिनरल ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर अनुमानित किया जाए तो लगभग 10 टन यूरेनियम ओर इन पत्थरों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, उसके अंदर आपको लगभग 1 kg यूरेनियम ऑक्साइड मिलेगा। और इस 1 kg यूरेनियम ऑक्साइड में 993 ग्राम तक यूरेनियम-238 आइसोटोप अवेलेबल है जो फिजन में काम नहीं करता, जिससे हम बम नहीं बना सकते, जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर या ऊर्जा के प्राप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 7 ग्राम, आप अनुमान लगा लीजिए, 10 टन ओर से आप केवल 7 ग्राम ऐसे यूरेनियम-239 आइसोटोप निकाल सकते हैं जिससे आप ऊर्जा संवर्धन कर सकें या ऊर्जा निकाल सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण, परमाणु युद्ध की विभीषिका और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। वार्ताकार थे प्रोफेसर सनत कुमार, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म टाइगर जिंदा है से, आवाजें आतिफ असलम की, संगीत से सजाया विशाल और शेखर ने, सब दृश्य इशाद कामिल का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म ब्रह्मास्त्र से आवाजें अरिजीत सिंह की, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत बद्ध किया है प्रीतम ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म राज से आवाजें सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की। संगीत से सजाया है राजू सिंह ने और सब रचना कुमार की।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की आंगन मिलन सेवा अभियान की शुरुआत। आंगनबाड़ी केंद्रों के जुड़ने की अपील। आंगनबाड़ी दीदियों के प्रति जताया आभार। झारखंड की समृद्ध संस्कृति के गवाह बनेगी देश की राजधानी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली आवास पर कल आयोजित होगा करम महोत्सव। चुनाव आयोग के कामकाज पर झामुमो सांसद महुआ माझी ने उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। रेल आईजी ने कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा का लिया जायजा। नशा तस्करी पर लगाम के लिए स्कैनर लगाने के दिए निर्देश। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक फाइनल में ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। आज पुरुष टीम का भी ईरान से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आंगन मिलन सेवा अभियान की शुरुआत की है। सेवा संकल्प अभियान के तहत यह विशेष अभियान 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ने, बच्चों के साथ खुशियां बांटने और आंगनबाड़ी दीदियों के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील की है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में अपने आवास पर कल आयोजित होने वाले करम मिलन समारोह की तैयारियों की जानकारी दी है। समारोह से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके आवास का दौरा कर शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने बताया कि कल होने वाले इस पारंपरिक महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को देश की राजधानी में प्रदर्शित करना है।
1: झारखंड में हमारे जनजातीय समाज के दो बड़े पर्व होते हैं, एक तो सरहुल, वो भी प्रकृति की पूजा है, और एक करम, ये भी प्रकृति की पूजा। जो प्रकृति की पूजा है, देश जाने कि सरहुल क्या है, करम क्या है, यही समाज प्रकृति को बचाया है, यही समाज जल जंगल जमीन को बचाया है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, अनलिनों से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समाज उसको बचा रहा है।
0: झामुमो सांसद महुआ माझी ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाना और वोटिंग अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर अनियमितता है।
2: जो अभी खुलासा हुआ है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, चुनाव आयोग के दो मेंबर्स ने ही, दो सदस्यों ने ही आरोप लगाया है, उनकी जानकारी के बगैर वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या क्या काम कर रहे हैं एसआईआर से रिलेटेड। अब सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे में अगर राहुल जी इस तरह की बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? सही कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में जनता से वोट देने का ही अधिकार छीन लिया जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट लिया जाए, तो ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है।
0: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव की योजना को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाया है।
3: संविधान के आर्टिकल 324 को देखेंगे और 2023 के इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल नियम कानून से हो रहा है साहब। किसी इलेक्शन कमिश्नर का कोई कोर्ट नहीं है, किसी इलेक्शन कमिश्नर का कहीं रिटन ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी निर्णय पे। एक अखबार की रिपोर्ट पे जो इस तरीके का हंगामा मचा वो तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तो आज जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इनको दरअसल ना बांग्लादेशियों से मेजर प्रॉब्लम है।
0: कोडरमा जंक्शन पहुंचे रेल आईजी अमरेश कुमार ने स्टेशन की सुरक्षा और निर्माणाधीन आरपीएफ बैरक का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेनों में नशा तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए प्लेटफॉर्म पर स्कैनर लगाने की आवश्यकता बताई। आईजी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय जिला पुलिस को बेहतर तालमेल के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्देश दिया।
4: यहाँ पर काफी अच्छा सतर्क है लोग, इसमें जो है ये सारी एजेंसियों को मिलकर काम करना है। इस पर काफी अच्छा पहले से जो है इसमें काम भी हुआ है और आगे भी इसमें सतर्कता के हम लोगों जताया हुआ है और चित्र घटनाएं जो हो रही हैं कभी रिफ्लेक्शन है उन्होंने तो रिसीवर को लोगों ने पकड़ा है और घर तक इसको हम लोग पहुँचाने में लगे हुए हैं ताकि फर्दर आगे क्राइम का जो है तो यहाँ समाप्त हो जाए। कैमरा जो है फॉरेस्ट के लिए जैसा आपने कहा है,
5: स्टेशन बहुत सारे पुलिस नए आ रहे हैं।
0: आईजी ने कोडरमा पोस्ट पर तैनात बल के जवानों को यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन चुका है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अभियान राज्य के गांवों से लेकर शहरों तक जन आंदोलन बन चुका है। राज्य के 91% से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, जहां ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम जारी है। स्वच्छता को नागरिक संस्कार बनाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
6: देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किए गए, देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है।
5: प्रधानमंत्री के इसी विजन को धरातल पर उतारते हुए झारखंड का लोहरदगा जिला आज देश के सामने एक मिसाल बनकर उभरा है। ठोस कचरा प्रबंधन, हर घर शौचालय और जल संरक्षण के निरंतर प्रयासों से यह जिला अब खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। इस बदलाव से लाभान्वित यहां के स्थानीय निवासी अरशद अंसारी और मोहित राय का अनुभव वाकई प्रेरणादायी है।
7: हमारा नाम हुआ अरशद अंसारी, हमारे गाँव है हिस्सल। हमारे गांव में शौचालय नहीं था, शौचालय सरकार के द्वारा बना, सबका घर में शौचालय है, सरकार के योजना का हम लोग लाभ उठा रहे हैं।
8: मेरा नाम मोहित राय है। लोहरदगा जिला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर काम किए गए हैं। लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। लोहरदगा जिला खुले में शौच से मुक्त जिला बन गया है। बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है।
5: लोहरदगा से उठी स्वच्छता की ये गूंज इस बात का प्रमाण है कि जब सरकारी नीतियां जन भागीदारी से मिलती हैं तो बड़े बदलाव आते हैं। जन सेवा से देश सेवा का ये सफर आज ग्रामीण भारत की तकदीर बदल रहा है, जो साल 2047 तक एक सशक्त और आत्मविश्वासी विकसित भारत के निर्माण की राह को और मजबूत करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए लोहरदगा से गोपी कृष्ण कुंवर के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में लगातार चौथे दिन जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राजधानी रांची में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि पेड़ और बिजली के पोल गिरने से कल रात से ही कई मोहल्लों में ब्लैक आउट है। जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 37 से हरा कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम ने देश को इन खेलों का तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण जीता था। आज पुरुषों के फाइनल में भी भारत का मुकाबला ईरान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की आंगन मिलन सेवा अभियान की शुरुआत। आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ने की अपील की। आंगनबाड़ी दीदियों के प्रति जताया आभार। झारखंड की समृद्ध संस्कृति की गवाह बनेगी देश की राजधानी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली आवास पर कल आयोजित होगा करम महोत्सव। चुनाव आयोग के कामकाज पर झामुमो सांसद महुआ माझी ने उठाए सवाल। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष के आरोपों को बताया निराधार। रेल आईजी ने कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा का लिया जायजा। नशा तस्करी पर लगाम के लिए स्कैनर लगाने के दिए निर्देश। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक फाइनल में ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। आज पुरुष टीम का भी ईरान से मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: Rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
3: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुंच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
4: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
5: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से

0: तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
1: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव

0: डॉक्टर मिस्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: News from Japan is that India are 12th on the medals table with 3 gold medals, 11 silver medals and 13 bronze medals, a total of 27 medals. Out of these, 4 have come today. Of course, we have been telling you how the women's team won the silver medal in the 50-meter three-position rifle, that is shooting. Then we also told you how the mixed doubles pair of Joshna Chinnappa and Senthil Kumar won the bronze medal in squash. And we have also been telling you how India won a historic silver medal in the men's marathon and a historic gold medal in women's kabaddi. As we speak, the men's kabaddi team is beginning their gold medal match against Iran, and we are hoping for nothing less than another gold medal. Will the Indian men's team also be able to clinch the top position? We will know soon. I am Darpan Tikia, and joining me is Mohammad Shahid Azmi.
4: जी दर्पण, एक अभी भी नतीजा सामने आ रहा है। मुक्केबाजी में भारत की प्रिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। जी हाँ, मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम वर्ग में जो राउंड ऑफ 16 का मुकाबला था, भारत की प्रिया का सामना रिपब्लिक ऑफ कोरिया की यूएनजी ओ से हुआ था, जहां पर प्रिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर मुकाबला जीत लिया है और अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। दूसरी तरफ एक और मुकाबला चल रहा है जहां भारतीय टीम ने अभी भी एक और गोल करके 2-0 की बढ़त बना ली है। जी हाँ, पुरुष हॉकी में भारत बनाम जापान मुकाबला जारी है, जहां भारत ने पहले हाफ में एक गोल किया था और बढ़त बनाई थी। ये गोल 15वें मिनट में अभिषेक ने किया था। जब अंतिम क्वार्टर शुरू हुआ, यहां पर भारत ने एक और गोल करके मुकाबले में 2-0 की बड़ी और महत्वपूर्ण बढ़त बना ली है।
3: Right, Japan are considered the real challengers to India. However, talking about pulsating action, there has been nothing more pulsating than the doubles badminton match between India's Gayatri Gopichand and Teresa Jolly versus Japan's Fukushima and Matsumoto. It went down the wire. We had the first game, which lasted over half an hour, and it ended up 24-22 in the favor of the Indian pair. And then the second set was also enthralling, 21-18 the scoreline there, the Indian team winning. Before that, we told you that PV Sindhu won her match. She is now going to face Japan's Tomoko Miyazaki in the third round. And currently, as we speak, Ayush Shetty in men's singles third round is in action against Chao Tin Chin of Chinese Taipei. He's leading the first set by 2-1.
4: एक और बैडमिंटन की खबर बता देते हैं। उन्नति हुड्डा का बड़ा उलटफेर देखने को मिला बैडमिंटन कोर्ट पर। जिस तरह भारत की युवा स्टार उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, जो उन्नति ने वर्ल्ड नंबर 6 इंडोनेशिया की पुटी कुसुमा वरदानी को सीधे गेमों में हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन उन्नति ने दबाव के बीच बेहतरीन संयम दिखाते हुए 21-19 से गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी ने अपनी लय को मजबूत किया। उन्नति ने आक्रामक खेल के साथ वरदानी पर लगातार दबाव बनाए रखा और 21-13 से दूसरे गेम को जीतकर मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्नति ने अगले दौर में अपनी जगह हासिल कर ली है।
3: We will hope that Unnati gets a lot more Unnati for India. By the way, did we tell you, in case you missed our earlier updates, let us remind you that 2 more medals are confirmed for India in squash. Earlier today in the women's singles semi-final, Anahat Singh staged a sensational comeback. She lost the first 2 games, then averted 3 match points to win against the Japanese opponent. Meanwhile, Abhay Singh in the men's singles defeated Pakistan's Mohammad Irfan to enter the final. So both of these players are in the final and are assured of a silver. And just as we speak, India have earned another penalty corner against Japan in the men's hockey match. Meanwhile, in the Kabaddi arena, on the Kabaddi mat,

0: seesaw battle. We are still into the starting few minutes, and India and Iran are going toe-to-toe with each other. Currently, Iran leading by 3-2.
1: जी, और सुबह के मुकाबलों को कुछ अपने श्रोताओं को जानकारी दे दें। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से उम्मीद थी कि पुरुषों के मुकाबले में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन एकल मुकाबले में सिंगापुर के लो किन यू से 12-21, 21-15, 14-21 से हार गए। वहीं बॉक्सिंग में कपिल पोखरिया ने 90 किलोग्राम वर्ग में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में ईरान के सैम एस्टास्की को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह हासिल कर ली। वहीं बॉक्सिंग में ही जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस के कार्लो पालम से हार गए हैं।
0: Right, we will be giving you all the updates as and when we have them. Keep tuning into Akashwani. We'll meet you again at 3:30 p.m.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम जय भारती लेकर हाजिर हूँ मैं पूजा, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाज़ थी रूप कुमार राठौड़ की, संगीत से सजाया था अनु मलिक ने, शब्द रचना जावेद अख्तर का।

0: अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी दलेर मेहंदी और चित्रा की। संगीत से सजाया था AR रहमान ने, सब रचना प्रसून जोशी का। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश भर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है।
1: कोयला चोरी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस MMDR संशोधन बिल का विरोध कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि सरकार के खजाने में पैसा न आए, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त न हो, सरकारी संस्थाएं मजबूत न हो, अवैध तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है।
0: प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू आज रांची में मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर उनकी बेटी के निधन पर दुख जताया और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे। राज्य में SIR के तहत फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित है। इच्छुक लोगों के पास मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए अब मात्र 4 दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फॉर्म 6 के माध्यम से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए वोटरों ने कल भी 7,000 से अधिक प्रपत्र जमा किए। राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक फॉर्म 8 भी जमा किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि SIR के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। सिमडेगा पुलिस का ऑपरेशन विश्वास लोगों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया है। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों के जरिए 63 चोरी हुए और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिया है। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा आदित्यपुर में आज वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान PIB रांची तथा भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने मीडिया कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यशाला के दौरान पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर लंबी चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में अपने आवास पर कल आयोजित होने वाले करम मिलन समारोह की तैयारियों की जानकारी दी है। समारोह से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनके आवास का दौरा कर शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने बताया कि कल होने वाले इस पारंपरिक महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध कला और संस्कृति को देश की राजधानी में प्रदर्शित करना है। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित मां कौलेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब पूजा करने के लिए फूल की कमी नहीं होगी। उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीणा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ की तलहटी में फूलों की बगिया विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में देवघर जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर दुमका जिले में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से मसानजोर डैम और सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: दुमका जिले में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मसानजोर डैम का जल स्तर 24 घंटे में 2 फीट से भी ज्यादा बढ़कर 388.80 फीट तक पहुंच गया है। डैम का एक हाई लेवल गेट खोल दिया गया है। वहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सतर्कता बरतने और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में भारत की महिला कबड्डी टीम ने रोमांचक मुकाबले में ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम ने देश को इन खेलों का 30वां स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण जीता था। आज पुरुषों के फाइनल में भी भारत का मुकाबला ईरान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर फिर से हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म दिल का रिश्ता के इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज है अलका याग्निक, कुमार सानू और सपना अवस्थी की। संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और सब तृष्णा समीर का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म पैडमैन से, आवाज अरिजीत सिंह की, संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने, शब्द रचना कौसर मुनीर का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म छलांग से, आवाजें सुरताज बरार और योयो हनी सिंह की। संगीत से सजाया है अल्फाज में संगीत से सजाया है हनी सिंह ने और सब दृष्टा अल्फाज का।

किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं, खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी शेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी

अगला और आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म स्त्री टू से आवाजें विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की। संगीत से सजाया है सचिन जिगर ने, सब तृष्णा अमिताभ भट्टाचार्य का।

0: ऋषि गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा, जनसेवा से देश सेवा का एपिसोड 9।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं फरहत नाज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
4: शुक्रिया फरहत।
2: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
3: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
2: जी।
3: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
2: जी सर।
3: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
2: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
4: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया है। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
2: सर, ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
4: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है। पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
2: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं। आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
3: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा कि वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
5: जी।
3: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में इनसेट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है। ये उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं
5: जी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
4: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे हम मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहाँ आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को। और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
5: राजारमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
4: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी विकलांग खिलाड़ी पैरा स्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
5: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
6: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्षयान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है, देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
5: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
3: एक तो जब हम हाथ से कोई काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा, तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी जो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे, ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
5: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
3: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम हाथ में लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो, और तभी से 40 साल हो गए अभी, सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो विक्रम 1 जो उन्होंने लॉन्च किया, बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है, और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से, उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था। तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
5: और अब राजा रमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
4: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेले और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया।
5: और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
4: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहां पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
5: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
4: इसके वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गाँव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है। हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गाँव को सुधारना चाहते हैं।
5: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
3: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो, और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था। जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
5: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
3: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
5: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजा रमन जी,
4: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियंस पैदा करें, शिक्षक जो कोचेस हैं, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
5: तो राजा रमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा?
4: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
5: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
3: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स है, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से का काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
5: प्रमोद जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुँचाया?
3: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर और जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
5: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से, कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
4: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इम्पोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया ये। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
5: तो एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
4: 1970 में कमलजीत संधू पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं, बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
5: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
4: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है, और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
5: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की बात की, तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने की मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
3: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशन, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब एसएलवी का काम करना चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं, वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर्स है, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये, और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
5: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
4: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है, एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाएं, और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं, ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे। परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
5: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
3: कि जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
5: जी राजा रमन जी,
4: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा, और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
5: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहाँ पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
3: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनके फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
5: तो मुझे देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
3: हमने जब इनसाइट वन लॉन्च किया था तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसाइट वन बी का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतनी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते। तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
5: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
4: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर ले, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है। बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को, खेलना होता है। जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों का बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
5: जी राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है। तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
4: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू के हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल है जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है। वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं। लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का बला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम।
5: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
3: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजीम बनाना चाहिए।
5: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
4: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
5: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
3: थैंक यू।
1: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते

श्रोता मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ, खुशहाल और उत्साह से भरपूर होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मनोरंजन, जानकारी, गीत और प्रेरणा से भरपूर एक शानदार कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए कुछ नए विचारों, रोचक चर्चाओं और मन को छू लेने वाला मधुर गीतों के सफर पर। आने वाले कुछ पलों में हम साथ साथ सीखेंगे, मुस्कुराएंगे और गीत संगीत का आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक विशेष चर्चा के साथ। मित्रों, आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जिसका संबंध हम सभी के स्वास्थ्य और जीवन से है। शुद्ध भोजन से शरीर स्वस्थ। श्रोताओं, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हमारा भोजन केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने और रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भोजन जितना पौष्टिक और स्वस्थ होगा, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। आजकल हमारी भोजन की आदतों में काफ़ी बदलाव आया है। घर के ताजे और पौष्टिक भोजन की जगह कई बार हम अत्यधिक तला भुना भोजन, बहुत अधिक नमक, चीनी और फास्ट फूड को प्राथमिकता देने लगे हैं। स्वास्थ्य के लिए किया गया यह चुनाव यदि नियमित आदत बन जाए तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, शुद्ध भोजन का अर्थ है केवल साफ सुथरा भोजन ही नहीं, बल्कि ऐसा भोजन भी है जो ताजा, पौष्टिक, संतुलित और सुरक्षित हो। भोजन तैयार करने से पहले हाथों की सफाई, फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, साफ पानी का इस्तेमाल करना और भोजन को उचित तरीके से ढक कर रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उसके उपयुक्त विकल्प, मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि भोजन घर का बना और संतुलित हो। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मीठा या अत्यधिक नमकीन भोजन कम मात्रा में लिया जाए। श्रोताओं, भोजन की शुद्धता के साथ साथ उसकी मात्रा और समय भी महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपनी भूख और शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी पैकिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि तथा लेबल की जानकारी अवश्य रखें। संदिग्ध, खराब या लंबे समय से खुले रखे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो पौष्टिक भोजन और भी जरूरी है। बच्चों को केवल स्वादिष्ट भोजन देने की बजाय ऐसे भोजन देना चाहिए जिससे उनके शरीर और मस्तिष्क का उचित विकास हो। परिवार के बड़े सदस्य स्वयं भी स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ों से ही सीखते हैं। तो श्रोताओं, स्वस्थ शरीर की शुरुआत किसी महंगे इलाज से नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की अच्छी आदतें से ही होती है। स्वच्छ भोजन, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और साफ सफाई, ये स्वस्थ जीवन के मजबूत आधार हैं। आइए हम संकल्प लें कि स्वास्थ्य के साथ साथ भोजन की शुद्धता और पौष्टिकता को भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी है। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं एक और विशेष भेंट वार्ता। मित्रों, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाहित है। यहाँ परिवार को केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला माना जाता है। लेकिन आधुनिक दौर में हमारी सामाजिक संरचना में एक बड़ा और चिंताजनक बदलाव देखने को मिल

0: रहा है, जिसे हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। आज संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली तेजी से बिखरता जा रहा है और एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली में भी आपसी दूरियां इतनी बढ़ गई है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मित्रों, इसी खास विषय पर हम चर्चा के लिए सुनेंगे श्री त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल जी को और इनसे बातें करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, हम आर्थिक विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बदलते आर्थिक परिवेश के दौर में हम आर्थिक रूप से काफी सक्षम हो गए हैं। सभी लोग विकास के राह में आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस राह में जब हम परिवार का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें विवाद भी देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि जब घर में परिवार में शादी ब्याह होती है तो सिर्फ पति पत्नी ही विवाह के बंधन में नहीं बंधते हैं, उनके साथ पूरा परिवार एक सूत्र में बंधता है और एक नया परिवार का गठन होता है। लेकिन जब परिवार बनता है तो कहीं ना कहीं आजकल इस समय बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। पारिवारिक विवाद हो जा रहे हैं, छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं और यही छोटे छोटे विवाद बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लेता है और फिर पारिवारिक विवाद शुरू हो जाता है और नतीजा डाइवोर्स या तलाक तक आ जाती है। तो आखिर ये सारी विवाद क्यों हो जा रही है, परिवार में विघटन क्यों हो जा रहा है, क्या कारण है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल। आप सेवानिवृत्त निदेशक हैं राज्य खाद्य नियंत्रण और फार्मेसी काउंसिल ऑफ झारखंड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर वर्णवाल साहब, स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, इस बदलते आर्थिक परिवेश में पारिवारिक विवाद बढ़ती जा रही है, क्या कारण मानते हैं डॉक्टर साहब?
2: ये सही है कि पारिवारिक विवाद बढ़ रहा है और ये समाप्त हो रहा है डाइवोर्स की प्रक्रिया पर। मेरे अनुसार इसका सबसे प्रमुख कारण है अधिक उम्र में शादी होना, क्योंकि उस समय लोगों में सहने की क्षमता बहुत कम होती है और वो एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है बहुत हद तक। दूसरा कारण है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि लड़कियां भी आज कमा रही है, कई मामले में पुरुषों से अधिक कमा रही है, तो तैयार नहीं है कि पुरुषों के अंदर रह के वो काम करें या उनकी बात माने। तीसरा कारण है मोबाइल या सोशल कॉन्टैक्ट, और अगला कारण है फ़ोन के कारण आसानी से अपने माँ से या अपने नहर के संबंधियों से सलाह लेना। मतलब 99% लोग सलाह नहीं देते, वो कहते हैं तुम दबो नहीं, तुम कम थोड़े ही हो, और अगर दबो नहीं कम नहीं हो तो रास्ता निकलेगा कैसे। प्रकृति ने स्त्री को हमेशा पुरुष की तुलना में इन्फीरियर बनाया है, बहुत फिजिकली उनका एक क्वालिटी है माँ बनना, जो पुरुष नहीं बन सकते। तो इसके लिए और माँ बनना है तो वो हमेशा उनको पुरुष के अंदर ही रह के बनना पड़ेगा, वो चाहेंगे भी तो अकेले उसका निर्वाह नहीं कर सकती हैं। और यह सही है कि शादियाँ लेट होती है, लेट मतलब अब आजकल 30 साल के मर्द और औरत बहुत सारे कुंवारे मिल जाएंगे जिन्हें मन लायक लड़के नहीं मिल रहे हैं, मन लायक घर नहीं मिल रहा है। लड़कियों या लड़कियों घर वालों को सरकारी नौकरी वाला चाहिए, बंगला वाला चाहिए, कार वाला चाहिए, लेकिन वो अपने सास ससुर परिवार का रहना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बोझ है। इसके लिए आधुनिक समाज भी दोषी है। आधुनिक समाज में जितना भी सिस्टम है सब मोनो न्यूक्लियर फैमिली की ओर सबको प्रेरित करता है, लगता है कि परिवार एक बोझ है तो हम साथ में क्यों रहें। तो ये 3-4 कारण हैं और हमने देखा, एक सामाजिक संस्था के हम अध्यक्ष के रूप में भी मुझे मौका मिला 4-5 परिवार में बात करने का, देखने का, और हमने कोशिश की अपने स्तर से कि उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए, परिवार को पुनः बहाल किया जाए, लेकिन अधिकांश केस में सफलता नहीं मिल पाती है। और उसका मुख्य कारण मुझे लगता है लड़कियों का अपना ईगो, और जब तक वो ईगो अपने आप को नहीं कम करेंगी तब तक परिवार निभाना मुश्किल है। और हमारा अपने लाइफ का अनुभव, मैं अभी 50 साल के मैरिड लाइफ में मैं कह सकता हूँ

0: परिवार वहीं पर शांति से चल रहा है जहाँ एक व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है, चाहे पति या पत्नी, और जहाँ दोनों का ईगो है वहाँ शांति नहीं हो सकती।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा सरेंडर की बात कि एक व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ सकता है, यहाँ तो दोनों पक्ष जो हैं वो चाहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ईगो की बात आ जाती है, और आर्थिक रूप से हर लोग आज आज़ाद है, वो चाहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम आज़ाद हैं, क्योंकि पैसे सबके पास आ गए हैं, समझौता कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि परिवार गाड़ी के दो पहिए के समान है, जब तक दो पहिए आपस में सामान्य रूप से नहीं चलेंगे तब तक परिवार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी।
0: ये सही बात है आपने जो कहा, लेकिन ये दोनों को समझना होगा कि दोनों में खूबियाँ और कमियाँ होंगी, तो दोनों की खूबियाँ और कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा तभी परिवार चल पाएगा। अगर ये कोई सोचे कि हम परफेक्ट हैं और दूसरा परफेक्ट नहीं है तो फिर गाड़ी को स्मूथली चलाना बहुत हद तक संभव नहीं है।
1: आजकल विलंब से विवाह हो रही है और ऐसे समय में लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से ही, हमारी तरह से ही वो हमसे व्यवहार करे, वो हो नहीं पाता है।
0: यही जो हमने कहा कि एक आदमी को सरेंडर करनी चाहिए या दूसरे की खामियां और अच्छाइयां दोनों को स्वीकार करके परिवार को आगे बढ़ा सकता है।
1: आपस में प्यार मोहब्बत और एक सामंजस्य स्थापित हो और हम खुशहाल रहें और एक नए परिवार का निर्माण करें, यही सबसे बड़ी आज की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस परिवार में छोटे छोटे विवाद उत्पन्न होते हैं जो आपस में मिल बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन ये विवाद घर से बाहर निकल जाता है और एक तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है और फिर वो तीसरा व्यक्ति इस स्थिति को नहीं समझ पाता है और दोनों को गुमराह करने लगता है। नतीजा ये होता है कि दोनों अलग अलग राह पर खड़े हो जाते हैं।
0: जब भी परिवार में तीसरा व्यक्ति आएगा, चाहे वो दोस्त हो या उसकी माँ हो या उसके पेरेंट्स हो, ये हमेशा विघटन का कारण होगा। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि आपस में बैठकर विवाद निपटाए और जिनकी गलती हो वो अपनी गलती मान लें, तो अधिकांश केस में सलाह हो सकता है, परिवार विघटन से बच सकता है और साथ में बच्चे पे भी इसका अच्छा गुण पड़ता है, क्योंकि माँ बाप अगर लड़ते रहते हैं तो बच्चे पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, जिसे आप संस्कार की नाम का बात करते हैं या संस्कार कहते हैं, उनमें संस्कार क्या पड़ेगा, माँ बाप बच्चे के सामने लड़ते हैं तो।
1: विवाह संस्कार है, ये 15वां संस्कार माना जाता है अपने यहाँ, और इस संस्कार में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सिर्फ परिवार नहीं, इष्ट मित्र अड़ोस पड़ोस भी जुड़ते हैं, इसके साक्षी बनते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे विवाद होते हैं जो उस विवाद को आराम से मिल बैठ कर सुलझाया जा सकता है, लेकिन बात बढ़ने लग जाती है तो फिर बात तलाक तक आ जाती है। तो तलाक की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए डॉक्टर साहब, कि सभी लोग खुश रहें?
0: इसको हम एक एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे कि एक माँ ने माँ के पास बच्ची ने फ़ोन किया कि माँ मैं नहीं रह सकता, हमारे हस्बैंड हमें बहुत पसंद नहीं करते हैं। रात के 11 बजे था, उन्हें माँ को फ़ोन किया कि भाई को भेज दो, हम चले आएंगे नहर। संयोग से पापा ने उनकी बात सुन ली, फ़ोन लिया और कहा, बेटी तुम्हारे हस्बैंड ने क्या तुम्हें मारा? नहीं। डांटा? नहीं। खाना नहीं दिया? नहीं। घुमाया नहीं? नहीं। जो सब बात नहीं है तो तुम हस्बैंड को छोड़ना क्यों चाह रही हो? तुम चुपचाप वहीं रहो। एक तुम्हारी बड़ी बहन 6 महीना पहले घर से झगड़ा करके आ गई है और तुम भी चाह रही हो जो अच्छा नहीं है। इसके बाद उसकी वाइफ मतलब लड़की समझ गई, फिर हस्बैंड जाकर सॉरी की, उनका कम्प्रोमाइज हो गया। तो बहुत अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो रास्ता निकल सकता है। एक और दूसरी घटना मैं बताता हूँ। लड़की और लड़के दोनों बंगलोर में जॉब कर रहे थे, लड़का चला गया दुबई 3 महीना के लिए, उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरे पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखोगे और जो भी होगा। तो लड़की ने उसको प्रॉमिस किया। इसी बीच में आ गया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में वो बिना किसी को कुछ कहे, बिना कोई परमिशन लिए हुए अपने सास ससुर का, वो चली गई भाई को राखी बांधने के लिए और इसको उन्होंने ईगो बना लिया। संयोग से उसके पंचायत में मैं भी था, मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया, भाई तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी गलती है, तुम सॉरी कहो। वो तैयार नहीं हुई सॉरी कहने के लिए, हमने कोई गलती नहीं किया है। तो भाई आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। शादी के बाद आपकी प्रायोरिटी आपके हस्बैंड है, हस्बैंड की प्रायोरिटी उसकी वाइफ है, ना कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, बाकी सेकेंडरी है। एक और इस पर कहना चाहेंगे कि एक बार एक साइकोलॉजिस्ट ने कई भाषण दे रहा था, बोला गया वहाँ पर कि भाई आप 10 आदमी का नाम लिखो जो आपके हितैषी हैं। उन्होंने लिखा और कहा इसमें 6 आदमी को मिटा दो। मिटा दिया, नाम बच गया हस्बैंड मतलब माँ बाप और बच्चे का। कहा अब दो और मिटा दो, माँ बाप को मिटा दिया। कहे दो और मिटा दो, तो सोचते रहिए किसको मिटाएं, तो मिटा दिया दोनों बच्चे का। तब हुआ कि भाई आपके लिए वाइफ है, हस्बैंड के लिए दोनों एक दूसरे के एसेंशियल हैं, बाकी कोई रिश्ता एसेंशियल नहीं है, बल्कि एसेंशियल आपके पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, क्यों लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर वही काम देगा। और इस पूरे समाज के लिए लेसन जा रहा है कि भैया अपना रिश्ता ठीक से रखो ना, आपके बुढ़ापे में या बच्चे काम देंगे ना आपके पेरेंट्स काम देंगे। सो एक लेसन समाज के लिए ये है कि आपस में मिलजुल कर सलाह करके रहो, अगर छोटी गलतियाँ हो थोड़ी तो उसे मिलकर सुधारो और स्वीकार करो।
1: जी, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, जब परिवार में हैं तो छोटे मोटे नोक झोंक होते रहते हैं, और ये नोक झोंक कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक मिठास को बढ़ाते भी हैं। लेकिन इस नोक झोंक को यदि हम लंबे समय तक खींचते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो ये नोक झोंक फिर एक बड़े संघर्ष का रूप धारण कर लेती है, फिर घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और इसमें एक तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करने लग जाता है और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। तो छोटे छोटे विवाद जो परिवार में होते हैं उसके मिल बैठ के सुलझाने की आवश्यकता है, तभी हम एक अच्छा परिवार का निर्माण कर पाएंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि सभी लोग खुश रहें परिवार में?
0: हमेशा मिलजुल कर समाधान निकालें, यदि गलती एक की हो दूसरा माने, दूसरे की गलती तो एक माने, और गलतियों पर सॉरी कहने के लिए वो तैयार रहे, यह परिवार में समाज के लिए और बच्चों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा।
1: और ईगो की बात?
0: हाँ, ईगो की बात है तो ईगो तो परिवार में ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईगो होगा चाहे पुरुष का हो या महिला का हो, तो ईगो में रास्ता नहीं निकल सकता है, तो वहाँ होगा कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो ईगो परिवार में नहीं होना चाहिए, ठीक है आप अपने प्रेस्टीज को कायम रखें, प्रेस्टीज छोड़े नहीं, लेकिन ईगो में कन्वर्ट ना करें। तो हमारी अपील माताओं और बहनों से यही है कि वह परिवार में ईगो ना बनाए। ठीक है पैसा कमा रहे हो आप कमाओ, नहीं पुरुषों को भी चाहिए कि वो महिलाओं से आप नौकरी करवा रहे हैं, उनसे कमवा रहे हैं, तो उनके कामों में आप भी सहयोग करें, या ना कहें कि भैया ये आपका ही काम है, वो दोनों का ही काम है, परिवार चलाना घर चलाना,
1: दोनों मिलकर काम करें, और दोनों को आपस में एक दूसरे को इज्जत भी देने की आवश्यकता है, और छोटे छोटे विवाद मिल बैठ कर निपटाएं, इसमें तीसरे व्यक्ति को आने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप गलतियों का एहसास कर लेते हैं और सॉरी बोलना सीख जाते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, और आप अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते हैं, बात ईगो पे ले लेते हैं, तब फिर बात दूर तक चली जाती है। तो छोटे छोटे विवाद मिल बैठ कर सुलझाए तो पारिवारिक विवाद होगा नहीं, क्योंकि परिवार में जो भी छोटी छोटी खुशियां होती है यकीन मानिए वो खुशियां बहुत करोड़ों की होती है। उस खुशियों को सहज कर रखिए और एक अच्छा जीवन यापन करें, इससे बड़ा और कोई भी सुख आपके पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद बर्णवाल, आज आप इस कार्यक्रम में आए। बढ़ता पारिवारिक विवाद कारण और क्या निदान है इसका, इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों एक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: दोस्तों यदि हम एक स्वस्थ सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें अपनी पारिवारिक जड़ों को मजबूत करना ही होगा, रिश्तों को वक्त देना ही होगा और अपनों की कदर करना ही होगा। इस समस्या का एकमात्र और अचूक समाधान है। तो अभी हमने सुना श्री त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल जी को, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबों के बीच साझा कर रहे थे, और इनसे बातें कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। श्रोताओं अभी आपने सुनी एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक भेंट वार्ता। बातचीत से जुड़े विचार निश्चित रूप से आपको स्वस्थ और बेहतर जीवन के लिए प्रेरणा देंगे। अब कार्यक्रम को थोड़ा संगीतमय बनाते हैं। जीवन के रिश्तों में मिठास, प्रेम और विश्वास का अपना ही महत्व है। इसी खूबसूरत एहसास को सुरों में पिरोते हुए फिल्म नागिन का लोकप्रिय गीत तेरे संग प्यार ने तोड़ना अब आप सुनेंगे। तो आइए कुछ पल संगीत के नाम करते हैं और सुनते हैं यह खूबसूरत गीत तेरे संग प्यार नहीं तोड़ना।

0: श्रोताओं,
1: अभी आपने सुना फिल्म नागिन का यह मधुर गीत की मधुर धुन और भावनाएं निश्चित रूप से आपके मन को छू गई होगी। इस गीत को गाई थी लता मंगेशकर और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस खूबसूरत संगीत के साथ कल्याणी का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम में अभी और भी उपयोगी चर्चा और महत्वपूर्ण बातें आपका इंतजार कर रही हैं। तो मित्रों, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं हमारे बच्चों के स्वस्थ जीवन शैली की। तो मित्रों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं हमारे बच्चों के स्वस्थ जीवन शैली की। श्रोताओं, बच्चे हमारे परिवार और समाज का भविष्य है। उनका स्वस्थ रहना केवल बीमारी से बचना ही नहीं, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी है। इसके लिए बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बच्चों के स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है संतुलित और पौष्टिक भोजन से। बच्चों को ताजे फल, हरी सब्जियां, अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मीठा और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ नियमित भोजन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों के लिए खेलकूद और शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ उन्हें कुछ समय खुले वातावरण में खेलना, दौड़ना और अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधि करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आज मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन बच्चों का दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इसलिए माता पिता को बच्चों के स्क्रीन समय को संतुलित रखने के साथ उन्हें किताब पढ़ने, चित्र बनाने, संगीत, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय पर सोना, समय पर उठना, भोजन का उचित समय और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसी छोटी मोटी आदतें आगे चलकर स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव बनती है। तो मित्रों, आइए हम अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छी जीवन शैली की सीख भी दें। पौष्टिक भोजन, नियमित खेलकूद, पर्याप्त नींद, स्वच्छता और संतुलित स्क्रीन समय, ये सभी मिलकर बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। इसी संदेश के साथ कल्याणी का चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियाँ, बातें, गीत संगीत का कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने मित्र युवराज को और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की मुख्य झलक।

आपसे कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 4:35 पर। 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुन सकेंगे श्रमिक लोक। 6:00 का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का और 6:02 पर आप सुनेंगे किसानों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

7:05 पर आप सुनेंगे समाचार। 7:11 पर होगा कार्यक्रम जिले में आजकल, और 7:15 पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम जो कि हो भाषा में होगा। 7:20 पर क्षेत्रीय समाचार। 7:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार ध्वनि चित्र, और 8:00 का वक्त होगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में, और 8:45 का समय होगा समाचार संध्या का।

ये थी आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की मुख्य झलक। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हो चुके हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम सांझ सरगम का। कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

दोस्तों नमस्कार, हम आप पहुंचे हैं आकाशवाणी रांची केंद्र में और आपसे मिलने, और कार्यक्रम का नाम है सांझ सरगम और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा पांडे। हमारी सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। घड़ी के सुइयों ने इशारा कर दिया है और शाम की इस सुहानी बेला में वक्त हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका नाम है सांझ सरगम। दिन भर की आपाधापी, भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो मन चाहता है कि कुछ पल अपने लिए हों। ऐसे ही कुछ हसीन और सुकून भरे पलों को समेट कर हम लाते हैं आज के कार्यक्रम में, जिसका नाम है सांझ सरगम, ताकि आपकी शाम थोड़ी और खास बन सके। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल की थकान को मिटाने का हुनर रखती है शाम, दिल की थकान को मिटाने का हुनर रखती है शाम, संगीत के सुरों में ढल जाए तो बन जाती है जाम। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो आपके इस शाम को और भी हसीन बना देगा।

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: अभी आप सुन रहे थे ये सदाबहार नगमा। ढलती शाम का वक्त बड़ा अजीब होता है ना दोस्तों, ये हमें एक दो चीजें सिखाती है, थके हुए पलों को विदा करना और आने वाले शांत रात का स्वागत करना। शाम और संगीत का रिश्ता भी बिल्कुल अटूट है। जब मन की बातें शब्दों में बयां नहीं हो पाती, तब संगीत हमारे जज्बातों को जुबान देता है। इसी बात पर मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जिंदगी की इन अनगिनत ख्वाहिशों के बीच जो दो पल का सुकून हमें मिल जाए, वही असल जिंदगी है। आइए इसी सुकून को महसूस करते हैं इस अगले नगमे के साथ।

वाह दोस्तों, क्या बोल थे और क्या धुनों का जादू था। मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा पांडे और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हम छोटी छोटी उलझनों में इतना खो जाते हैं कि ढलती शाम की खूबसूरती, ठंडी हवा के झोंके और अपनों के साथ मिठास को महसूस करना ही भूल जाते हैं। इसलिए तो महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, सम्मुख व परम प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई वो बात गई। बीते कल की चिंता छोड़िए और आज की इस ढलती शाम के हर एक पल को जी भरकर जी लीजिए। चलिए आपको एक बार फिर से ले चलते हैं सुरों की दुनिया में और साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: दोस्तों, वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है, इसका एहसास ऐसे ही सुहाने कार्यक्रमों में होता है। 25 मिनट का ये सफर देखते ही देखते अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी बात छोड़ जाना चाहती हूँ। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मुस्कुराते रहिए और अपनों का हाथ थामे रखिए, और संगीत की इस मिठास को अपने दिलों में बरकरार रखते हुए सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

और ये थी हमारी आज की आखिरी पेशकश कार्यक्रम सांझ सरगम में। तो अपनी दोस्त प्रतीक्षा पांडे को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है FM मुख्य समाचार का। समाचारों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश भर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने SIR के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि पार्टी द्वारा 28 सितंबर को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा और निर्वाचन आयोग का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी का मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा जिले के टंडवा में आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन

0: किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुलने से आधार से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने केंद्र से जुड़े कर्मियों से प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। चतरा जिले के इको पार्क में करीब 35 लाख रुपए की लागत से बटरफ्लाई जोन विकसित किया जा रहा है। दक्षिणी वन प्रमंडल चतरा के DFO मुकेश कुमार ने बताया कि इस जोन में विभिन्न प्रकार की 50 से अधिक प्रजातियों की तितलियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ उनका प्रजनन भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर बटरफ्लाई जोन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। चर्चा होगी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर। भेंटवार्ता होगी तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भेंटवार्ताकार होंगे अनूप बागी, भेंटकर्ता रमेश कुमार दास। एक और भेंटवार्ता होगी फॉस्टर केयर पर जानकारी। भेंटवार्ताकार होंगे अनुराग मेहता और इनसे बातें करेंगे रमेश कुमार दास। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। सात बजकर 15 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी खाद का उपयोग करने का सही तरीका। होलो गीत सुनिएगा प्रेम सिंह पूर्ति और साथियों के स्वर में। एक और उड़िया लोकगीत होगा सुरभि पान और साथियों के स्वर में। 8:00 हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 हम आपको सुनवाएंगे एशियन गेम के कैप्सूल हाईलाइट बेस्ड ऑन 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 10:20 पर हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं उपनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना हमने लिया है फिल्म दादा से। गायक कलाकार हैं KG यशुदास।

अभी आपने सुना फिल्म सफ़र का ये नगमा, आवाज़ें थी किशोर कुमार की, और आइए सुनते हैं फिल्म देवर का ये गाना, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अभी आपने सुना फिल्म मदारी का ये नगमा, आवाजें थी लता मंगेशकर और क्षमा करें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म, क्षमा करेंगे, अभी आपने सुना फिल्म फागुन का ये नगमा, आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म मदारी में लता मंगेशकर और मुकेश को।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz से, और आइए सुनते हैं अगला फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना फिल्म यादगार का ये नगमा, आवाजें थी लता मंगेशकर की। अगला गीत है फिल्म दुल्हन वही जो पियामन भाई। गायक लकार हैं हेमलता।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म जोहार महमूद इन गोवा। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना के प्रमुख मनीष खेत्रपाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परियोजना प्रमुख के साथ बिजली, पेयजल, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। इस मौके पर परियोजना प्रमुख ने सांसद को जनहित से जुड़े मामलों में सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल के समीप आज अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर तीन लोगों को घायल कर दिया। तीनों घायलों को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुटी है। राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में कल रात हुए सड़क हादसे में बुजुर्ग राजकुमार प्रसाद की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में आज स्थानीय लोगों और मृतक के परिजन ने प्रदर्शन किया। बोकारो जिला के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मामर कुदर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग को लेकर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक घर और जेवर दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। दुकान संचालक ने बताया कि अपराधियों ने घर और दुकान का लॉकर तथा अलमारी खुलवाकर लाखों रुपए नकद और जेवरात लूट लिए। लूटपाट के क्रम में अपराधी दो मोबाइल फोन लेकर भी फरार हो गए। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक गुमटी से चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ सन्नीवर्धन ने बताया कि इस मामले में चोरी का सामान लदा एक वाहन समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के चेरी मनातू परिसर में आयोजित स्टेट लेवल चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। ओपन एज ग्रुप फुटबॉल प्रतियोगिता में सरला बिरला यूनिवर्सिटी की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अर्का जैन यूनिवर्सिटी दूसरे और

मेजबान सीयूजे की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।
1: आपका स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले कुछ बातें करते हैं। यानी आज 26 सितंबर है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पर्यावरण के स्वास्थ्य के संबंध में विश्व स्तर पर जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिन को मनाने के पीछे केंद्रीय विचार यह है कि मानव स्वास्थ्य का पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए अपरिवर्तनीय संबंध है। श्रोताओं, अगर हम इसके महत्व की बातें करें तो यह आवश्यक है कि दुनिया समझे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच अभिन्न संबंध है। इसके सभी समुदायों के स्वास्थ्य जीवन हेतु हरित पुनर्प्राप्ति में निवेश करना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान में सामना की जा रही परिस्थितियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से COVID-19 की स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसके लिए मानव जाति के लिए पर्यावरण पर ध्यान देना तथा संतुलन बनाने की कोशिश करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
2: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
3: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
3: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
4: भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में।
3: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया।
2: आपने
3: ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
5: डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
6: औरों को भी सिखाओ।
7: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
8: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
7: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: श्रोताओं, तंबाकू का सेवन मानव शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इस के बारे में कुछ नुकसान और बीमारियों की बातें करें तो सबसे पहला है कैंसर का खतरा। तंबाकू, चाहे धूम्रपान हो या चबाने वाला गुटखा या खैनी, मुंह, गले, फेफड़ों और मूत्राशय का कैंसर पैदा करता है। हृदय रोग या रक्त वाहिकाओं को संकरा करता है, जिससे दिल का दौरा यानी जिसे हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फेफड़ों की क्षति, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की कार्य क्षमता में भारी कमी आती है। निकोटीन की लत से तंबाकू में मौजूद निकोटीन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से अपना गुलाम बना लेती है। तो आइए इस पर कुछ और हम विस्तृत जानकारी लेते हैं अनूप बागे से, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सदर अस्पताल में कार्य कर रहे हैं। तो ये तंबाकू सेवन से क्या क्या हानियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
9: तंबाकू सेवन से बहुत सारी बीमारियां होती है, और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर हम शरीर को देखें तो सिर से लेकर पैर तक सभी भाग इससे प्रभावित होते हैं, और इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। और उसमें जो प्रमुख है, बालों का झड़ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दांतों का सड़न, जो लोग पान, गुटखा, खैनी खाते हैं, गुड़ाकू सेवन करते हैं, उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं फेफड़ों का कैंसर, जो लोग जितने भी धुआं वाले तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे आप सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं या गांजा सेवन कर रहे हैं, अभी के समय में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट का भी सेवन करते हैं, है ना, वो भी उतना ही हानिकारक है जितना कि एक नॉर्मल सिगरेट आपके शरीर के फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है। तीसरा हमारा है दिल की बीमारी। जैसे मैंने कहा कि तंबाकू और हमारा गैर संचारी रोग ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि तंबाकू एक बहुत बड़ा जोखिम है गैर संचारी रोग होने का, और जिसमें मुख्यतः आपका कैंसर है और दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, जिसको हम लोग दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ कहते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको बताया श्रोतागण, कि कैंसर में मुँह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है ना, पैनक्रियास की कैंसर हो सकती है, उस वक्त फेफड़े का कैंसर हो सकता है, और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में आप सोच सकते हैं कि इसमें स्ट्रोक आ सकता है, किसी को अचानक हार्ट अटैक हो सकता है, असमय मृत्यु हो सकती है, ये सारी बीमारी इससे जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें और कुछ बीमारियां जैसे पेट में अल्सर होना, ये भी एक बहुत अभी के समय बहुत कॉमन हो चुका है। देन आपको आता है बदरंग अंगुलियाँ। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से तंबाकू के संपर्क में है ना, वो व्यक्ति हर दिन उसके संपर्क में आता है, उसे छूता है, उसका सेवन करता है, इस कारण क्या होता है, वो चीज़ें उसके शरीर में धीरे धीरे आने लगती है, और वो सब उसके शरीर में उस चीज़ें दिखती है ना, जिस तरह से उसको बदरंग अंगुलियाँ, इस तरह की चीज़ें उसके शरीर में पनपने लगती हैं। देन आता है आपका बिक्रिस शुक्राणु, है ना, ये भी बहुत कॉमन आज के समय में है। आज के समय में देखा जाए तो ये बीमारी जो नपुंसकता की समस्या है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में स्मोकिंग करना, बीड़ी का सेवन करना या खैनी खाना, तो जिससे कारण व्यक्ति को नपुंसक बना देता है, जिस कारण उसकी फैमिली आगे नहीं बढ़ पाती है। और ये सिर्फ ना केवल पुरुषों की समस्या है बल्कि महिलाओं को भी होती है। अगर कोई महिला लंबे समय से गुड़ाकू सेवन कर रही है या खैनी खा रही है या सिगरेट पी रही है, तो उसके पूरे प्रजनन प्रणाली को भी प्रभावित करता है, और अगर कोई गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे पर भी ये बहुत अधिक प्रभावित करता है, और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव होता है। एंड लास्टली जिसको मैं कहना चाहूँगा बीमारी है गैंग्रीन, और जिसको सिंपल भाषा में या सरल भाषा में अगर बात करें तो वो है सड़ना, जिसमें पैर का सड़न होने लगता है, जो अधिक मात्रा में लोग जब लोग इस तरह के नशे की चीज़ों को तंबाकू को सेवन करते हैं तो ये बीमारियाँ उनको जल्द से जल्द होने लगती है। तो ये बहुत कॉमन बीमारियाँ जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा।
1: तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं?
9: इसकी रोकथाम के लिए कोई बड़ी चीज़ तो करनी नहीं है। एक सबसे बढ़िया एक टूल मैं कहना चाहूँगा वो है जागरूकता। जितने लोग इसके बारे में जानेंगे लोग उतने ही इस बीमारियों के बारे में जानेंगे और लोग उससे दूर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है। अभी के समय में बहुत सारे नौजवान जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं अभी भी इससे वंचित हैं।

0: इसके बारे में नहीं जानते, या कोई जानते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे अभी देखिएगा सरकार की तरफ से पूरे भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमारे झारखंड में ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाके लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, टीचर लोगों को अवेयर करते हैं, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हम इसके जो गिरफ्त है, इसका जो आकर्षण है, उससे हम बचा सके। और मैं इसमें और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस साल WHO, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं, हर साल तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन हम लोगों को एक थीम दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है तंबाकू एवं निकोटिन के प्रति आकर्षण को पर्दाफाश करना। और इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा भी इस साल हम लोगों को बहुत सारे कार्य योजना दी गई है, और जिसके माध्यम से हम आम जनमानस को इसके बारे में बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।
1: अंत में हमारे जो श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे?
0: अंत में मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज को बेहतर बनाएं, और कोशिश करेंगे कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको इसके बीमारियों के बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जिससे संरक्षण में बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि हर दिन अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करें। और अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का या लड़की किसी परिवार में सेवन करते हैं तो उनको मना करें, और अगर कोई चाहते हैं कि इसके लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे सदर अस्पताल में तंबाकू निवारण केंद्र है, वहाँ आकर के हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ आकर के उनसे जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका वो मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी है, 1811-2356। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ये नंबर है 1811-2356। आप इस नंबर पर कॉल करके जो भी सुविधाएँ हैं वो आप उससे ले सकते हैं।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं मनोरंजन के लिए ये गीत।

0: आज हम अपने श्रोताओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बातें करेंगे। ये है फोस्टर केयर। आखिर ये क्या है, ये कैसे इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, इससे क्या लाभ होता है, इस पर आज हम कुछ जानकारी लेंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर राजस्थान के निर्देशक अनुराग मेहता जी।
1: नमस्कार, जोहार, सभी को जोहार।
0: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये फोस्टर केयर है क्या।
1: देखिए, फोस्टर केयर बताने से पहले मैं आपको इसका ये बताना चाहूँगा कि फोस्टर केयर प्रोग्राम झारखंड में पहले से चल रहा है। 2018 में इसकी गाइडलाइन भी आई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को लेके जो अभी यूनिसेफ झारखंड के साथ CCR, NUSRL और झारखंड राज्य की बाल संरक्षण संस्था के साथ मिलकर हमें 3 जिलों के अंदर, जो कि वेस्ट सिंहभूम है, हजारीबाग है और बोकारो है, इन 3 जिलों में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको देख के इसको फोस्टर केयर के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी भूमिका आपको यही बता दूं कि फोस्टर केयर पे हमको काम करते करते झारखंड में पूरा 1 साल हो चुका है और उसी के बारे में आज यह वार्तालाप करके मैं आपको फोस्टर केयर के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि फोस्टर केयर क्या है।
0: एक बात हम जानना चाहेंगे, जब हम इस विषय को जानकारी लेने के लिए आपके पास हैं, तो सबसे पहले तो हमें, जब हम बच्चों की बातें करते हैं, तो भारत में बच्चों से संबंधित प्रमुख कानून जो है कौन सा है।
1: देखिए, बच्चों से संबंधित जो भारत का प्रमुख कानून है वो है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जो कि संशोधन हुआ है 2021 में, और उसी के अंदर ये सारा सब कुछ जो बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और न्याय सुरक्षित करता है, ये कानून। इसके अंतर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि से संघर्षरत, जिनको अपन CICL बच्चे भी कहते हैं, और एक होता है CNCP, ये 2 तरह की कैटेगरी होती है, और बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई है और वैकल्पिक देखभाल की व्यवस्था शामिल है।
0: अच्छा, ये जो आपने कहा कि देखभाल की बातें कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे होता है?
1: देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले वो बच्चे कि जिनके माता पिता तो हैं पर कहीं किसी कारणों से वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहीं या तो मिसिंग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, या वो बच्चे घर से भागे हुए होते हैं, या उनका कभी किसी, मतलब कोई उनका देख रेख करने वाला उनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसे बच्चे देखभाल की संरक्षण और आवश्यकता के वाले बच्चे कहलाते हैं, जो कि JJ एक्ट जो कहलाता है उसकी सेक्शन 214 के अंतर्गत आता है। अच्छा। फोस्टर केयर देखिए एक परिवार आधारित देखभाल का एक अंग है फोस्टर केयर। फोस्टर केयर का मतलब होता है कि जो बच्चे जिनके माता पिता हैं लेकिन वो किसी कारण से उनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे परिवार के साथ उन बच्चों को रख के और उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी सामाजिक परिवेश को उनका सुधार किया जा सके, ताकि बच्चे लंबे समय तक बाल गृह में न रहकर, या कहीं कम्युनिटी में भी अगर होते हैं, समुदाय में भी होते हैं, तो वो स्कूल नहीं जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो सरकार ने एक ये कानून बनाया कि एक स्कीम बनाई थी कि जो फोस्टर केयर पालन पोषण देखरेख अधिनियम भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को किसी परिवार के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखा जाता है।
0: ये कितने प्रकार का होता है?
1: ये वैकल्पिक और फोस्टर केयर 2 तरह का होता है। एक होता है बहुत कम अवधि के लिए होता है, और एक होता है लंबी अवधि के लिए। अच्छा। और एक होता है इसके अंदर कि शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जिसको इंडिविजुअल फोस्टर केयर बोलते हैं, एकल परिवार फोस्टर केयर कहलाता है, और एक होता है ग्रुप फोस्टर केयर, जहाँ पे एकल जो फोस्टर केयर होता है उसके अंदर आप किसी भी व्यक्तिगत, उसको बोलते हैं कि व्यक्तिगत पालन पोषण देख रेख बोलते हैं, उसमें अधिकतम आप 2 बच्चे ले सकते हैं। अगर किसी के खुद के 2 बच्चे हैं तो वो 1 बच्चा ले सकता है, और अगर किसी के 1 भी बच्चा नहीं है तो अधिकतम 2 ले सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिबलिंग, यानी कि अगर भाई बहन है और वो संख्या उनकी 4 है या 5 है, तो अगर कोई परिवार सक्षम है तो वो उन 4 बच्चों को भी उसमें फोस्टर केयर में रख सकता है। और एक होता है समूह फोस्टर केयर, उसमें अधिकतम जो जैविक जो बच्चा होता है किसी भी परिवार का, उसके अलावा मैक्सिमम 8 बच्चों तक उसके अंदर रख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और फोस्टर केयर लंबी दीर्घ अवधि के लिए भी होता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, और 18 साल तक के लिए भी हो सकता है, और ये 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है।
0: अच्छा, ये फोस्टर केयर और दत्तक ग्रहण में क्या अंतर है?
1: देखिए, ज़्यादातर लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहाँ आके थोड़ा सा भटक जाते हैं कि उनको फोस्टर केयर और दत्तक ग्रहण एक ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, फोस्टर केयर तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें वैकल्पिक व्यवस्था और जहाँ की दत्तक ग्रहण एक पूरा परमानेंट व्यवस्था है दीर्घकालीन के लिए, जहाँ बच्चा के बिना किसी रुकावट के उस परिवार में लंबे समय तक रह सकता है और वो उन्हीं का उसका सारे कानूनी अधिकार उस बच्चे को मिलते हैं, परिवार के अंदर जो भी उसको अधिकार होते हैं या उसका संपत्ति का अधिकार होता है वो सब मिलते हैं। लेकिन फॉस्टर केयर में यही होता है कि फॉस्टर केयर के अंदर ये कोई इसकी अवधि बहुत कम होती है और ये एक टेम्परेरी, जिसको बोलना चाहिए कि एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए भी रख सकते हैं, लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। और इसमें परिवार को बच्चे का अधिकार परिवार के पास नहीं होता है, वो अपना नाम नहीं दे सकते हैं इसके अंदर।
0: अच्छा।
1: और ना बच्चा कभी इसमें प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकता है।
0: अच्छा।
1: और बच्चा चाहे या परिवार चाहे, जब तक वो बच्चा उस परिवार में रह सकता है और परिवार नहीं चाहता कि बच्चा अब नहीं रहे, तो वो बच्चा वापस से संस्थागत देखभाल में जा सकता है या किसी दूसरे फोस्टर परिवार में जा सकता है।
0: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये समूह फोस्टर केयर में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, और एक और भी हम बात जानना चाहेंगे कि इसकी न्यूनतम उम्र क्या होगी।
1: समूह के अंदर अधिकतम बच्चे 8 जा सकते हैं, जो कि अगर किसी परिवार के जैविक बच्चे 2 हैं तो मैक्सिमम 8 बच्चों तक जा सकते हैं। लेकिन अगर यही वही बताया जैसे कि सिबलिंग के केस हो गया, अगर कोई 10-12 भाई बहन है तो सिबलिंग के केस में संख्या बढ़ सकती है। और न्यूनतम अवधि कोई भी जो फॉस्टर केयर में बच्चे को लेना चाहते हैं परिवार, उनकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 55 से 60 वर्ष होनी चाहिए इसके अंदर। और अगर दोनों पति पत्नी का दोनों का अगर दोनों का देखें कि जोड़ देखें, अगर उम्र का अगर 70 मिनिमम 70 वर्ष होनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: और अधिकतम दोनों का मिला के 110 से ऊपर नहीं, 115 से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: अच्छा। और एक बात भारतीय होनी चाहिए,
1: वो मैं उसमें क्या होता है, देखिए कानून में जेजे एक्ट में तो लिखा हुआ है कि जेजे एक्ट का सेक्शन 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, जहाँ फॉस्टर केयर को पूरा दर्शाया गया है, उसमें लिखा गया है कि भारतीय होना चाहिए। लेकिन हर स्टेट का क्या होता है कि अपना अपना अलग अलग रूल बना सकते हैं, अपनी अपनी गाइडलाइन बना सकते हैं। तो झारखंड के लिहाज से मैं कहूँगा कि वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, उसकी दो उनका वो जो भी पति पत्नी उसको लेना चाहें, वो शादी उनका 2 साल कम से कम मिनिमम 2 साल उनका शादी को होना चाहिए। और 6 से 12 वर्ष के बच्चे इसमें जा सकते हैं, और इसके लिए उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: उनका माता पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और उनका अधिकतम जो एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने बताया आपको।
0: अच्छा।
1: कि अधिकतम दोनों का अगर वैकल्पिक है तो 115 से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
0: अच्छा, बातों ही बात में एक मेरे जहन में बात आ रही है कि ये जो एकल माता पिता कौन होते हैं और किस प्रकार बच्चे को?
1: एकल माता पिता वो होते हैं, या तो देखिए एकल माता पिता वो होते हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और कुछ होते हैं कि जो अगर फादर की या मदर की किसी दोनों में से एक की डेथ कर गया हो कोई, या किसी का विवाह विच्छेद हो गया, जिसको डाइवोर्स भी बोलते हैं अपन, ये एकल माता पिता कहलाते हैं। और एकल माता पिता के लिए ये रूल है कि एकल पिता कोई भी बालिका को फॉस्टर केयर में नहीं ले सकता है, लेकिन एकल माता जो है वो बालक या बालिका दोनों को ले सकती हैं।
0: अच्छा।
1: फॉस्टर केयर के अंदर दोनों में से किसी को भी ले सकती है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एकल पुरुष के लिए बाध्यता है कि वो बालिका को फॉस्टर केयर में नहीं ले सकते।
0: हम ये जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी ये जानना चाहेंगे कि फॉस्टर केयर बच्चों की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं।
1: देखिए फॉस्टर केयर बच्चों को एक सुरक्षित पारिवारिक वातावरण देता है, और जिससे कि बच्चे का उसका भावनात्मक और मानसिक विकास बेहतर होता है। इससे उसमें बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार आता है, वे समाज में एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन पाने के लिए तैयार हो पाते हैं। साथ ही साथ संस्थागत जीवन में बाहर निकल बच्चे को अपनापन, स्थिरता और भविष्य की बेहतर दिशा प्रदान करता है।
0: तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें?
1: इसके लिए अगर किसी को भी फॉस्टर केयर के लिए आवेदन करना है तो वो DC ऑफिस के अंदर है, जिला बाल संरक्षण इकाई 3rd मंजिला, वहां आके अपना आवेदन और इसके बारे में संपूर्ण अधिक और जानकारी लेने के लिए वहां पे आ सकते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, जोहार।
0: तो इसके साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दे, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
1: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
0: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
2: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
3: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
0: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
5: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
0: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए?
6: एनएसबी कराने।
0: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने MMDR अधिनियम का किया स्वागत। राज्य सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। SIR के तहत विभिन्न फॉर्म जमा करने और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए अब 3 दिन शेष। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन मंत्री ने नदियों और जलप्रपातों में बढ़ते जलस्तर पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उपायुक्त से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तलब। और एशियाई खेलों के कबड्डी में आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन। महिलाओं के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खान और खनिज संशोधन अधिनियम MMDR अधिनियम का स्वागत किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश भर में समान व्यवस्था कायम होगी और पारदर्शिता आएगी, जिससे सभी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड को छोड़ सभी राज्यों ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खान और खनिजों की नीलामी में कोई रुचि नहीं दिखा रही है।
1: अरे, छुटकी तो 10 साल की हो गई है, उसका लगन जल्दी करना अच्छा।
2: बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस MMDR एक्ट संशोधन बिल का विरोध कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि सरकार के खजाने में पैसा न आए, सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त न हो, सरकारी संस्थाएं मजबूत न हो, अवैध तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है।
0: प्रदेश कांग्रेस ने MMDR अधिनियम पर भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर MMDR को लेकर भ्रम फैलाने और झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड से निकलने वाले खनिजों पर पहला वैधानिक अधिकार राज्य का है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा जिले के टंडवा में आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुलने से आधार से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने केंद्र से जुड़े कर्मियों से प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने का आग्रह किया। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा आदित्यपुर में आज वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पोषण माह, स्वच्छता ही सेवा तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने सरकार और मीडिया के बीच सतत एवं सकारात्मक संवाद पर जोर दिया। इस दौरान पद्मश्री छुटनी महतो ने डायन कुप्रथा के प्रति जागरूकता पर बल दिया। राज्य में SIR के तहत फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक निर्धारित है। इच्छुक लोगों के पास मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए अब मात्र 3 दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फॉर्म 6 के माध्यम से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि SIR के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आइए सुनते हैं इस योजना पर देश के प्रधानमंत्री का क्या विजन है।
3: देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है।
0: स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री के इस विजन का असर धनबाद जिले में साफ दिख रहा है।
4: बाहर जाते थे उसमें बहुत सारी समस्या आती थी, आज जब शौचालय घर में हो गया तो सबको समझ में भी आने लगा, उसमें जागरूकता भी हुआ कि नहीं, घर में साफ सुथरा रखना, शौचालय रखना, बहुत ही अच्छा मैसेज रहा।
5: सर 5 साल पहले बना था शौचालय प्रधानमंत्री वाला, जिसके कारण अभी हम लोग बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के महिलाओं को भी बाहर नहीं जाना पड़ता, अभी हम घर से ही शौचालय जाते हैं और गंदगी उनकी पहले हुआ करता वो भी नहीं होता है।
0: डालसा के तत्वाधान में रांची के महुआजारी पंचायत भवन और कानीजाड़ी गांव में नालसा द्वारा संचालित मानसिक बीमारी और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना पर 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पीएलवी तालिब अंसारी और कालिंदर गोप ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य

0: पिछले 4 दिनों के दौरान रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। नदियों और जलप्रपातों में पानी का बहाव बढ़ गया है। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वे लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तलब किया गया है। श्री अंसारी ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है।
1: बैठक किया था और सभी डीसी को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग नजर बना के रखिए कितनी बारिश है, कितनी आंधी है, कहाँ पे ठंड का गिर रहा है, इसका आकलन कीजिए आप लोग और मुझे भेजिए। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम हर तरह का मदद हम लोग करेंगे। लोगों से यही अपील करेंगे कि थोड़ा सा बारिश हो रहा है, घर में रहें, कहीं बाहर ना जाएं।
0: जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों के कबड्डी में आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन रहा। महिला कबड्डी टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम एशियन गेम्स में देश को 4था स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले महिला क्रिकेट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने MMDR अधिनियम का किया स्वागत। राज्य सरकार पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप। कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। SIR के तहत विभिन्न फॉर्म जमा करने और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए अब 3 दिन शेष। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन मंत्री ने नदियों और जलप्रपातों में बढ़ते जलस्तर पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उपायुक्तों से नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट किया तलब। और एशियाई खेलों के कबड्डी में आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन। महिलाओं के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

0: उसका लगन जल्दी करना अच्छा होगा।
1: ठहरिए, कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
2: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
1: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
2: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
1: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
1: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
2: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
1: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
2: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
1: और लड़के की 21 वर्ष है।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले में आज तक आजकल।

0: में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: मंगलवार को खूंटी जिले के सभी गांव और विभिन्न पंचायतों में करम पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ विधि विधान से पूजा पाठ और पारंपरिक सामूहिक नाच गान के साथ मनाया गया। स्थानीय करम उत्सव में सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक रामसूर्य मुंडा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई अतिथि शामिल हुए। इस हफ्ते कांग्रेस ने सांसद के आवासीय कार्यालय में केंद्र सरकार के खान एवं खरीद संशोधन विधेयक के विरोध

0: प्रेस वार्ता की और कांग्रेस प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा,
1: झारखंड को केंद्रित करके काला कानून लाया गया, जिस कानून से झारखंड को राजस्व जो शेष मिलता था उस शेष पर सीधे प्रतिबंध लगाने का काम भारत सरकार ने करने का काम किया है।
0: खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झामुमो ने भी इस हफ्ते विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा और महिला मोर्चा की स्नेहलता कंडुलना ने कहा,
2: केंद्र सरकार ने हमारे राज्य सरकार के साथ हमेशा सौम्य व्यवहार करते आ रहे हैं, कभी हमारे 1,30,000 करोड़ राशि को जमा किया और यहाँ का जो भी खरीद सकता है अपने नाम आकर कर रही है, ऐसे में हमारे सरकार अपने राज्य को कैसे दिला पाएंगे। हमारे बेटी बहन जो प्रत्येक महीना 2,500 के हिसाब से देती है, ये 2,500 रुपया हम लोग कहाँ से देंगे।
3: खान एवं खनिज जो विधेयक लाई है 2026 झारखंड को बहुत ज्यादा हानि है, तो ये जब तक वापस नहीं लेगी हम सड़क से सदन तक जाएंगे, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
0: जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य में विभिन्न पंचायत और क्लस्टरों में संशोधन और नए मतदाता संलग्न करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी ने बताया,
4: जिनके नाम में कोई त्रुटि है, उनका गलत मैपिंग कर दी गई है या फिर उनके एज में या किसी भी चीज में अगर कोई भी त्रुटि है भूलवश या किसी भी कारण से, उसको सही करने का मौका लोगों को दिया जा रहा है, मतदाताओं का। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनका की किसी भी 2003 के वोटर के साथ मैपिंग नहीं की गई है, उनकी भी सुनवाई अभी नोटिस के माध्यम से की जा रही है। हर बूथ पर प्रतिदिन लगभग 2 से 3 बूथ पर सुनवाई होती है, जहां पर हम लोगों की टीम जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे भले ही वो प्रवासी मजदूर हों या फिर यहाँ के अस्थाई निवासी हों, उन सब का नाम हमें लिस्ट में जोड़ना है, वोटर लिस्ट में जोड़ना है।
0: फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक बेचने वाले गिरोह का खूंटी पुलिस ने भंडाफोड़ कर 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा,
5: पूर्व में काफी सारी बाइक्स की चोरी की है और इस तरीके से करते करते इन लोगों के पास से हम लोगों को 19 टू व्हीलर्स मिले और इनके द्वारा एक 4-व्हीलर भी इस तरह से चुराया गया था जो कि ओडिशा का एक नंबर है, उसपे गिरोह का हम लोगों ने एक तरह से पर्दाफाश किया है। इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है।
0: खूंटी पुलिस ने मानवीय संवेदना और तत्परता दिखाते हुए लगभग 2 वर्षों से लापता व्यक्ति को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया। दूसरी तरफ मिशन मुस्कान के तहत गुम और चोरी हुए 28 मोबाइल फोन बरामद कर असली धारकों को खूंटी पुलिस ने मोबाइल सुपुर्द किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
6: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज से। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है। सुनना चाहा है मोहल्डिया सुनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सुनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान। बरियातू रांची से नितेश मेघा, आकांक्षा और अरब। उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य। जोजो कुड़मा से मनोज गगराई, बासंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद।

मथुरा कॉलोनी सेंटवाला चाईवासा से भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर। बड़ा निमडी चाईवासा से तुलसी पथिक मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहिनी महतो, दीनबंधु। छोटा निमडी चाईवासा से बापूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली का ये नगमा। आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और शनि। ग्राम सोराबेड़ा से बासिंग सरदार, बीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान और नबीहा। बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, मायसा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राऊ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलकें का ये गाना। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱪᱟᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱮᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟ ᱯᱨᱮᱢ ᱥᱤᱝ ᱯᱩᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱟᱭᱟ
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चलते तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिले हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गाँव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव

0: कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
2: को नवा संदेश तायम दिला लहासेत बोन मड़ांगुआ आर तेहेन्या भेंट वार्ता रे बोन आंजोमा बरसात के मौसम में मवेशियों की देखभाल चेलेका नुआ जापूर समय रे आबोई जहां तिनक गे डंगरी कड़ा को मिना कुआ से मेरोम को मिना कुआ चेलेका आबो बेस देबोन दोहो दाड़े कुआ उनको देखभाल बोन दोहया ओना इदी कते नुआ जानकारी किन एमाबोन कना लक्ष्मण चातर तिकिन आर अकिन सला गपाल मराव रे मिना किना डोबरो बुड़ियोली तिकिन तो दिलाबोन अंजम लिया नुआ गपलमरा
3: तिसिंग अलिंग आकाशवाणी चाय बसा कार्यक्रम किसान बाणी परिवार पैते मजगांव प्रखंड छि पीड़ जुमलाय रे मिना तिया पांडुआ बुरु हतु रे लिंग सेटर बिटायना अलिंग डोबर बुडिल तिकिंग चिरगेल अटकार उबायना छि अबेन मंडो एसो सियानी आडो अनुभवी सिटीए ते छि ना जकेल अबेन चास बास किले मिले आ उतु चास बास तनलो तेरो आंडो उरी मेरों सिम सुकुरी मेन कन कोणो ची दुदुलुम ची सबिन लेकन को अबेन बेन असुल तेट को अबेन एन कोलो तेमेन अबिना एन रदो विषय ओडोंग रे जपगर आयरते चासा गया किंग जोहार
4: जोहार जोहार जोहार
3: एन दो अबेन आ उनुरुम कुची उपरुम को दो अबेन गबेन जगर तरे उनां बुगीवा
4: अलिये नतुम दो लक्ष्मण छतार आतो दो पंडोबरु अंडो पोस्ट ऑफिस दो बेनी सगर मजगांव प्रखंड देतलिंग बिलोंगस्थना
3: एसो रहा सर एक जे लक्ष्मण चतर तिकिंग अबिन डोगर को बेन जगर केडा एन दो जगर दो नीना के तना अबिन लो जपगर तिया दो बरसात के मौसम में मवेशियों का देखभाल कैसे करें गामा असड़ रे उरी मेरों को ची सबिन लिकन जंतु जानवर को असुल तेट को बो चिली के नल रखा को तिया विषय रे अबेन एसु किले मिली जानवर को ची उरी को मेरों को कोणों को बेन असुल केट को एन दो नेको नेन घाम असल रे चिली के जोगाव को तिया दूर कर
4: इस बनी टॉपिक लिंग जो लिंग जानकारी मिना लिंग खास करके लिंग तेरे मेरों को लिंग असुल तेर को कम से कम 30-35 टूल का एन दो उसको कोणों को
3: ये
4: नेते मैं दो चिकन को मैंने गाय
3: उड़ी
4: निम्डोली सुनते ही इन्हें इनका असुल तेर को पारा को लिया असुल तेर को लेकिन बरसात रे खास करके गामा समय इसको तकलीफ हुआ इनको सतर बले ते आकु जो में अंडो गामा तो हुआ इन रे तरह तरह रे बीमारी को हुआ त्या संभावना टाइने मेरम उड़ी को रे इन रे तो मेरम को रे खास करके मेरम को बरसात के सीजन रे अब तो बुसुआ को जदि मीना रो आंडो बणी इन रे माचा जुका बई ते हुआ आंडो अंगियन तोरसंग इनको जगह बदल को ते हुआ निधे तो इनको ताइने आको कौन तार को आसराय बो बई को इन को पेशाब या कौन रे इन दो दाद ये ना को पेशाब को इन तुरंत इन सीतापा जेटे केर के जुका जेटे नौ रे तोल को ते हुआ
3: अच्छा ऐसो रास्ता एक जी अंडो ऐसो सिया जगर बन जगर केडा अच्छा निन मेरों को ना निमिन पूरे ए दोसी लिका मेरों को बन असुले केट को इनको दो ना दो हुडिंग को मिना को मरांग को मिना को अंडो ना दो बायदा को मिन लिका मिना को इनको एन हुडिंग को रियो मरांग को रियो गामा दिन रियो ची सबिन लिकान दिन रियो जो को ये पिंडी की नो लेकर ना मचा लेकर ना को रे गिती को रहा सा हुआ
4: ये को दार को तय हो चाहे दार को टाइम दो लूज मौसम रे संभावना पूरे ताई ने बरसात रे नैने ते बचाव को लगी दो इन आयरा परंपरिक हाथों को तो चिल के पिंडी के लिए का कबाई मरांग मरांग बाबू दादा पर दादा को पूर्वज को इन रे माचा को बाई के इन दो ना हो ग्रामीण क्षेत्र इनका अलिंग दुलिंग बाई नो तले जो का लगा इन रे को तैने हुपुड़ी को तो अलग नौते रिके को तो वन बरसात के दिन रोद
3: अच्छा एन दो एन मोटे एन को इनकन झाड़ा लेकन सुलई हुआ को मोटे रे एन को झाड़ा हसो लेका एन दो आबे ना निमिन सुदूर क्षेत्र रे ना निमिन चाय बसाए ते 80-90 किलोमीटर लेका सनिंग रे मिना बिना एन दो एन आबु मजगांव ब्लॉक भीतर रे इनका हतु हतु रे अब मन ना दो फशु डॉक्टर को मना को इन एरिया चिल्कन सुविधा ने मेरों को

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: वह मिसिको नवा संदेश तायम समय हो यु लगित और आबो गपल मरा हो अडी ढेर किछु बन अंजम किया मेनखान चला चलाते दिला आरो मिटंग सेरेन लिंग अंजम होचो बना ओडिया लोकगीत
5: याबायम लिया सुरबी पान ओंडो जोड़ी को पाएते।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है माहौलडीहा सोनुआ से, नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अन्नू, तन्नु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सुहाग का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

अगली फरमाइश है, बड़ा बम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती राकेश तांती कुमारी निशा तांती प्रकाश तांती ललित प्रधान उग्रसेन प्रधान श्यामदेव नायक पूजा सीमा नायक सुदर्शन प्रमाणिक ममता नमिता सुशीला ग्राम गिलियालोहर से कोमल बेसरा बसंती रमेश अन्नू बनमाली सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गंगा जमुना का ये प्यारा सा गाना। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

अगली फरमाइश है बठिंडा रोड डोबाली राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गीत का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

अगली फरमाइश आप सबों की, गांव हड़ीरा से मानता राम सिंह कुंटिया। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मन की आंखें, इस फिल्म का गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम और बोर गांवकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म इंतकाम का ये नगमा। आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पाकीजा का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अगली फरमाइश आप सबों की है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राव भाई, साईद भाई, गांधी बाग अंकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिश का ये नगमा। आवाज़ें हैं असफ भोसले और किशोर कुमार की।

और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीश, अंबिका, अंकिता, अमित, मनीष और मुन्ना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली। इस फिल्म का गाना आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

अगली फरमाइश आप सबों की। बड़ा निमरी चायवासा से तुलसी फतेह मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म प्यार का सागर। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

0: इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
3: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
4: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
5: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर व भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, ये सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
2: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
5: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
3: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
6: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
7: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
3: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
9: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
10: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
11: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
12: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और और के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4

0: पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज केरलम के कोल्लम के नजदीक कुंदरा में सारिफीन से मुतअल्लिक भारतीय कौमी इमदाद बाहमी फेडरेशन NCCF के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आजादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज में इमदाद बाहमी से मुतअल्लिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदाम किए गए।
0: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुंची।
0: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुँचाया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मनशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज़ के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की बहाली, मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ्फुज़ के जरूरतमंद बच्चों को असर नौ मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि मनशियात के इस्तेमाल से मुतासरा बच्चों को तहफ्फुज़, इलाज, काउंसलिंग, आबादकारी और तालीम, नेज खानदानी जिंदगी के बहाली के मौके फराहम किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल, महफूज खानदानी माहौल और बाज आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अवलीन मुतासरीन के हकूक के मरकज का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौइयत का ये अवलीन मरकज बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और जरूरी तआवुन फराहम करेगा जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नजर नहीं आते। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ जिले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संगे बुनियाद रखा। इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट के आगाज से मुल्क भर में रोजगार के मुतअद्दिद इम्कान पैदा होंगे।
2: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
1: वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज 81वीं अकवाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के हाई लेवल इजलास से खिताब करेंगे। अकवाम मुत्तहदा जनरल असेंबली का

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना, ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर working in various levels.

0: वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स, लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
1: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
0: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वाज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ बाय इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गवर्नमेंट फंडिंग फॉर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स एक नया इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ पोस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50%, हाँ ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
1: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
0: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन रिसाइकलिंग। You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इफ यू लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर्स। दूसरी चीज है कि हार्डवर्क के सिवा कुछ नहीं होता है, अगर आपको बड़ा कुछ अकम्प्लिश करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है, एक है लोगों के साथ काम करो सेल्फलेसली, और दूसरा है हार्डवर्क करना चाहिए।
2: देश में एक राष्ट्र

0: वास्तविक समय को लागू किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
1: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम हैं, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अभी जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
0: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनके दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
3: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं

0: लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है?
2: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पॉलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्ट्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
2: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
3: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
0: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के

0: इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पे कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारे, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूं सू या सोंस बोलते हैं। गंगा की डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2,220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2,300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा की तरफ ले जाएं, गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
0: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाली और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
0: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म, सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, ज्योश्ना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजिशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3 मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वॉज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Tahil missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. said Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing second in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after five events, keeping himself firmly in contention as the remaining five disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनी सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
2: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा, हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही, तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स्ड टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
0: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
3: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत ड्रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
0: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
1: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion.

0: 13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
0: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of her young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के मानुष शाह के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in second and South Korea in third.

कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्टबोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना UAE से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पे। श्रोताओं आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। पहला गजल है चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में।

इसके साथ ही हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

अभी आपने सुना फिल्म चंपा कली का ये नगमा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर की। और आई सुनते फिल्म आरजू में लता मंगेशकर को। ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारे गामा।

0: ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
1: अगला गीत है फिल्म कभी कभी से, गायक लगा रहे हैं मुकेश।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का सुरों की रंग कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous